0: as to who should be chosen as the Chief Minister.
1: And staying with the news of Tamil Nadu, there's just 24 hours to go, and that is the time that remains in that governor's deadline on or before the 13th of May, when Tamil Nadu's freshly minted Chief Minister Vijay has to prove his majority on the floor of the House. Yesterday, on Monday, Vijay spent his time calling on senior leaders from his opposition. Vijay met with the DMK chief as well, M.K. Stalin, his immediate predecessor, for the first time since his mandate. He also called an NDA ally, PMK's chief, and met with NTK and MDMK chiefs at their residences. While Vijay's courtesy calls to the opposition leader exudes statesmanship, his real challenge is managing his allies. It's the first big vote for the new Vijay alliance in Tamil Nadu, one that will set the tone for his term ahead. All eyes are now on the Assembly of Tamil Nadu. And switching tracks to Assam, that's all set for that massive political show of strength that's going to be taking place for Himanta Biswa Sarma today. Himanta Biswa Sarma is going to be taking oath for a second consecutive term as a chief minister. The swearing-in ceremony is going to be taking place today in Kanpara, and that's expected to witness her in the presence of the Prime Minister. Narendra Modi is going to be there. Of course, we do know Amit Shah, the Home Minister, the Defence Minister, Rajnath Singh, and several other senior NDA leaders will be there for that swearing-in ceremony that's going to be taking place today. More than 20 chief ministers and deputy chief ministers from across the country are also expected to be attending. Now, during that event, this is going to be a major national level NDA gathering that's going to be taking place. And even before that grand swearing in ceremony in Guwahati, suspense really continues over the final shape of the cabinet, with Sarma there indicating that around 18 to 19 ministers are likely to be inducted into the new government. Speaking to the media ahead of the ceremony was The new chief minister, of course, this is Himanta Biswa Sarma 2.0 that we're talking about, who said that there's no final decision that's yet been taken on the names, adding that the cabinet list will be finalized only after discussions with the BJP national president, and that's JP Nadda and Assam BJP in charge, Nitin Abin. Now, the BJP leadership is weighing that balance, and that is between experienced faces and fresh entrants, as that is the shape that NDA 3.0 in the state is expected to take. Sarma said that the people of Assam have given the NDA a clear mandate and assured that the new government would continue to work steadily for the welfare and the development when it comes to the state of Assam over the next 5 years. The BJP-led alliance returned to power with a massive mandate, making this the third consecutive win in Assam for the NDA. And speaking to NDTV's editor-in-chief, Rahul Kaval, was Himanta Biswa Sarma after that historic poll result. Let's listen in to what Himanta Biswa Sarma 2.0 has to say.
2: Himanta Biswa Sarma, century, wo bhi hat-trick ke saath, logon ko lag... तमिल नाडु में क्या होगा इस पे अनिश्चितता थी, पश्चिम बंगाल को लेके सस्पेंस था, केरल में कितनी टाइट फाइट होगी. अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक काफी क्लियर है वो आसाम का, लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी, इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी, 73 से 102 पार, स्वागत है और मुबारकबाद.
3: For us, it was expected primarily because in 2024 Lok Sabha election, we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100, and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be somewhere around 95 to 100.
2: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं, ये देखिए मैप, उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102, तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है. जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहाँ तक कि गौरव गोगोई भी हार गए. जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए, गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया. क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
3: I think that point of time he was not tested. But in last 1 year, people of Jorhat could see him from a very close quarter. And important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
2: अच्छा हिमंतदा, इस वक्त आप NDTV के सारे चैनलों पे लाइव हो, अभी इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा शर्मा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
3: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग वी हैव बिकम कम्प्लीट माइनॉरिटी। सो हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने, ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका, हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूट चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
2: ये बताएं हिमंतदा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से GSDP जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
3: देखिए, असम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और असम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्कालेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा, और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
1: Now let's talk about the newly elected Suvindu Adhikari Sarkar that has allotted these portfolios to 5 ministers as the West Bengal government takes shape. We have Dilip Ghosh, who received the state's rural development as well as panchayats and animal resources department. And then we have Agni Mitra Paul, who is set to head women and child welfare. Ashok Kirtania has been given the state's food department, while we have Khudiram Tudu, who has received a backward class welfare department. And then we also have Pramanik, who will be heading the North Bengal development as well as sports and youth welfare department. The ministers have thanked the West Bengal Chief Minister Suvindu Adhikari after they took charge and said this is their opportunity to serve the people of the state of West Bengal. And now we have Prime Minister Modi, who's issued a second call for austerity amid global tensions impacting crude supply. In Gujarat, the Prime Minister said amid a global crisis, it's the local duty of the citizens to save foreign spending, holding back on gold purchases and visits abroad. The Prime Minister also called for economic discipline and saying that if COVID was the biggest crisis of the century, then this is the biggest crisis of the decade. Government sources have told NDTV that India has 60 days of crude oil supply and about 45 days of LPG rolling stock. Meanwhile, the opposition leaders have hit out at the Prime Minister, saying his appeal is an admission of failure in the management by the centre, demanding a call to know the real and true picture.
4: सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले, गोल्ड की जरूरत नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी, तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है।
1: The Prime Minister urging Indians to buy Indian goods which are made in India, not to go abroad and, travel locally and also to carpool and use public transport as much as possible. With that, sipping in a short break, back with a whole lot more. Stay with us.
5: Sheila Rekwar from Chitrakoot runs a canteen. People relish the food she prepares. She started this canteen by taking a loan under the Mukhya Mantri Yuva Swarozgar Yojana.
6: बहुत मदद मिल रही है और ये योजना बहुत अच्छी है। मैं तो कहती हूँ जितनी हमारी बहनें घरों में बैठी हैं, वो भी अपनी ये इस योजना का लाभ उठाएं और घर से बाहर निकलें और अपना ये सब काम देखें।
5: The Yogi Adityanath government provides with loan of up to 25 lakh rupees at affordable rates, along with a subsidy of up to 25% to eligible young men and women aspiring to become self-employed.
7: और मुझे लगता है आज के दिन पे काम की कमी नहीं, थोड़ा हौसला चाहिए। हौसला है तो युवा अपने उड़ान का रास्ता स्वयं तय कर लेगा। सरकार उसका संबल बनने को तैयार है।
5: Under the leadership of Chief Minister Yogi Adityanath, the government of Uttar Pradesh is fully committed

0: Here's from his opposition. Vijay met with the DMK chief as well, M.K. Stalin, his immediate predecessor, for the first time since his mandate. He also...
1: We will be somewhere around 95 to 100.
2: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं. ये देखिए मैप, उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102. तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है. जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहाँ तक कि गौरव गोगोई बिहार के जोरहाट में, मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं. तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया. क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
1: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट इन लास्ट वन ईयर पीपल ऑफ जोरहाट कुड सी हिम फ्रॉम अ वेरी क्लोज क्वार्टर. एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ओन सीट, ही लॉस्ट 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
2: अच्छा हिमंत दा, इस वक्त आप NDTV के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप NDTV इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं. पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है. जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए. असम इज ए वेरी स्पेशियल केस. राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ. असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है. हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट. टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%. 12 से 13 जिला में हम लोग we have become complete minority. So हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं. So चुनाव जीतने और हारने, ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट. तो हमारे शंका, हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है. सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी प्रोबेबली. ये हमारे जो जूट चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है.
2: ये बताएं हेमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं? क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से GSDP जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी. आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
1: देखिए, आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है. सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा. और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट.
0: Now let's talk about the newly elected Suvindu Adhikari Sarkar that has allotted these portfolios to 5 ministers as the West Bengal government takes shape. We have Dilip Ghosh, who received the state's rural development as well as panchayats and animal resources department. And

0: bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है। जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की है।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: And switching tracks to Assam, well, Hemanta Biswa Sarma is all set to take charge as the chief minister all over again. Do remember, this is the second consecutive term for Hemanta Biswa Sarma. Now, he's preparing to take oath as the chief minister. The swearing-in ceremony that's going to be taking place today is expected to be witnessed in the presence of Prime Minister Modi. We also have Amit Shah, the Home Minister, there. The Defence Minister, Rajnath Singh, will be there. And several senior NDA leaders, more than 20 chief ministers and deputy chief ministers from across the country are expected to attend, turning the event into a major national-level NDA gathering. Even before the grand swearing-in ceremony, the suspense continues over the final shape as far as the cabinet is concerned. There's Sarma there indicating that around 18 to 19 ministers are likely to be inducted into the new government. Speaking to the media ahead of the ceremony, Sarma said that there's no final decision that's been taken on the names, adding that the cabinet list will be finalized only after there have been discussions with JP Nadda and Nitin Naveen. And the BJP leadership is weighing a balance between experienced faces and fresh entrants as the NDA 3.0 is taking shape in the state. Sarma said that the people of Assam have given the NDA a clear mandate and assured that the new government would continue to work steadily for the welfare and the development of the state over the next 5 years. The BJP-led alliance returned to power with a massive mandate, making this NDA's third consecutive term in the state.
1: हमारे नया जो मिनिस्ट्री है शपथ लेने जा रहा है और ये समारोह में भारत की सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेगा साथों साथ भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी रक्षा मंत्री राजनाथ जी और तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री हमारे एनडीए का जो घटक दल है उनके अध्यक्ष लोग तो बहुत सारे लोग आएगा इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए कुछ लोग आएगा
2: बंगाल की जीत हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है और असम में जिस तरीके से इतने बड़े जनादेश के साथ एक बार फिर से हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी है इसका श्रेय दोनों राज्यों की जनता मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है
0: And speaking exclusively to NDTV is Hemanta Biswa Sarma. He spoke with the editor-in-chief of NDTV, Rahul Kawal. Let's listen in to what he had to say about this historic poll result.
3: Hemanta Biswa Sarma, century, wo bhi hat-trick ke saath, logon ko lag... तमिलनाडु में क्या होगा इस पे अनिश्चितता थी पश्चिम बंगाल को लेके सस्पेंस था केरल में कितनी टाइट फाइट होगी अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक काफी क्लियर है वो आसाम का लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी 73 से 102 पार स्वागत है और मुबारकबाद
1: फॉर अस इट वॉज एक्सपेक्टेड प्राइमरीली बिकॉज इन 2024 लोकसभा इलेक्शन We registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be Somewhere around 95 to 100.
3: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं ये देखिए मैप उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102 तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है जब हैट्रिक के साथ आता है साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला कांग्रेस को धो डाला यहां तक कि गौरव गोगोई भी हार गए जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूं तुम मुझसे नोट करा लो इसको मैं हरा दूंगा कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं तब तो जीत गए इस बार आपने हरा दिया क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया
1: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड But in last 1 year, people of Jorhat could see him from a very close quarter. And important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
3: अच्छा हिमंतदा, इस वक्त आप एनडी टीवी के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप एनडी टीवी इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
1: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशियल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग we have become complete minority. So हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। So चुनाव जीतने और हारने, ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका, हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
3: ये बताएं हिमंतदा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी, जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है, वो ज़्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
1: देखिए, आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा, और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
0: Now, we also do know that this is the third term for the BJP storming to that win in Assam under the leadership of Hemanta Biswa Sarma, who is taking charge as the chief minister for the second time. That swearing-in ceremony that's going to be taking place in a few hours' time from now. He's no longer just a regional satrap. He's emerging as one of BJP's biggest national power centers as well. Let's get you more details on the new chief minister, the second time round chief minister of Assam.
4: Three elections, three victories, one man at the center of BJP's Assam juggernaut. Hemanta Biswa Sarma, the architect of BJP's northeast expansion, has now delivered a hat-trick in Assam, crushing the Congress, the very party where his political journey began.
1: Hamara jeet ka sehra Pradhan Mantri Narendra Modi aur Assam BJP ka karyakarta. तमाम कार्यकर्ता, वही जीत का फेज है। और जीत का श्रेय किसको जाते हैं? असम का जनता को। असम का जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए।
4: When former Assam Chief Minister and Congress veteran Hiteshwar Saikia was trying to bring the youth to the party fold after the restive 1980s of the Assam agitation, he found his man in Hemanta Biswa Sarma. A young student activist in those days, Sarma, who had built a name for himself in campus politics by then was associated with the influential All Assam Students Union. Since joining the Congress in 1991 and quitting it in 2015, he remained the go-getter for both Saikia and later Tarun Gogoi. Once a key Congress troubleshooter, Sarma's dramatic exit from Congress in 2015 changed Assam's political destiny. Denied space in Congress, Himanta crossed over to the BJP and rewrote the state's power equations. From strategist to kingmaker to undisputed king, he first helped

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा।
2: सबका राजा और प्योर मसाला।
3: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
3: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: have to go by the party's overall guidance. So I maybe want to induct all new, maybe all old faces. So those, I have to take the guidance, general guidance from my national president. Then only we can decide who will join, who will not join.
1: बंगाल की जीत हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है और असम में जिस तरीके से इतने बड़े जनादेश के साथ एक बार फिर से हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी है इसका श्रेय दोनों राज्यों की जनता मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है।
2: A big victory here in Assam. आप इसको किस तरह से देखते हैं और ये उत्तर पूर्व में बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
3: नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी बिना अभी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता है। आप जानते हो कि

0: और अच्छा होगा। और आप जानते हो आसाम हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा एक सेंटर है, तो ये गेटवे आप बोल सकते हो, तो इसका डेवलप होगा धीरे धीरे, पूरा नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा।
1: You know, from starting out in the Congress and holding several important portfolios at the time the party held power, to making a major political shift to the BJP about a decade back, Himanta Biswa Sarma has come a long way. And post-election results, he made it clear that the next phase of his government would not be about big announcements, but execution of what began in his first tenure in 2021. Our editor-in-chief Rahul Kaval has spoken exclusively to Himanta Biswa Sarma after the historic poll results. Here's what he told NDTV.
2: हिमंत बिस्वा सरमा सेंचुरी, वो भी हैट्रिक के साथ, लोगों को लग तमिलनाडु में क्या होगा इस पे अनिश्चितता थी, पश्चिम बंगाल को लेके सस्पेंस था, केरल में कितनी टाइट फाइट होगी, अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफी क्लियर है वो आसाम का, लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी, इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी 73 से 102 पार, स्वागत है और मुबारकबाद।
3: For us, it was expected primarily because in 2024 Lok Sabha election, we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be somewhere around 95 to 100.
2: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं, ये देखिए मैप, उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102, तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है। जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहाँ तक कि गौरव गोगोई भी हार गए जोरहाट में। मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया, क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
3: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट इन लास्ट वन ईयर पीपल ऑफ जोरहाट कुड सी हिम फ्रॉम अ वेरी क्लोज क्वार्टर, एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ओन सीट, ही लॉस्ट 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
2: अच्छा हिमंत दा, इस वक्त आप NDTV के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप NDTV इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है, जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं

0: असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग वी हैव बिकम कंप्लीट माइनॉरिटी। सो हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। सो चुनाव जीतने और हारने ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज़ नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर इसका और एक चैप्टर है।
1: ये बताएं हेमंतदा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जीएसडीपी जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
0: देखिए असम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और असम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
2: Well, as Hemanta Biswa Sarma becomes the only non-Congress chief minister to hold a second term in the state, his tenure will be closely watched for the execution of sensitive promises regarding illegal immigration and the Citizenship Amendment Act. But with the BJP storming to a third straight win in Assam under his leadership, Hemanta Biswa Sarma is emerging as one of BJP's biggest national power centers. Here's all that you need to know.
3: Three elections, three victories, one man at the center of BJP's Assam juggernaut. Hemanta Biswa Sarma, the architect of BJP's northeast expansion, has now delivered a hat-trick in Assam, crushing the Congress, the very party where his political journey began.
0: Hamara jeet ka sehra Pradhan Mantri Narendra Modi aur Assam BJP ka karyakarta. तमाम कार्यकर्ता वही जीत का फेज है और जीत का श्रेय किसको जाते हैं? असम का जनता को। असम का जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए।
3: When former Assam Chief Minister and Congress veteran Hiteshwar Saikia was trying to bring the youth to the party fold after the restive 1980s of the Assam agitation, he found his man in Hemanta Biswa Sarma, a young student activist in those days. Sarma, who had built a name for himself in campus politics by then, was associated with the influential All Assam Students Union. Since joining the Congress in 1991 and quitting it in 2015, he remained the go-getter for both Saikia and later Tarun Gogoi. Once a key Congress troubleshooter, Sarma's dramatic exit from Congress in 2015 changed Assam's political destiny. Denied space in Congress, Hemanta crossed over to the BJP and rewrote the state's power equations. From strategist to kingmaker to undisputed king, he first helped BJP end decades of Congress dominance in 2016. In 2021, he became chief minister. And now, by leading BJP to a third consecutive triumph, Sarma has cemented his legacy as Assam's most powerful political force. His politics blends aggressive Hindutva, regional nationalism, governance delivery, and sharp political messaging. From anti-encroachment drives to welfare outreach to projecting strong leadership.
4: अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The

0: Mr. Sarma said the people of Assam have been quite clear in giving the NDA a clear mandate and assured that the new government would continue to work steadily for the welfare and development of the state over the next 5 years.
1: हमारे नया जो मिनिस्ट्री है शपथ लेने जा रहा है और ये समारोह में भारत की सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेगा, साथों साथ भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी और तमाम एनडीए शासित प्रदेशों का मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, हमारे एनडीए का जो घटक दल है उनके अध्यक्ष लोग, तो बहुत सारे लोग आएगा, इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए कुछ लोग आएगा। लिस्ट तो इट इज जस्ट 18 or 19 नेम्स, सो कोई लिस्ट बनाना जरूरत नहीं था, दैट इज इन माई मेमोरी इट्सेल्फ। मतलब एज ऑफ नाउ बिफोर डिस्कशन विद हिम आई कांट से एनीथिंग बिकॉज आई हैव टू गो बाय द पार्टीज ओवरऑल गाइडेंस। सो आई मे बी want to induct all new, maybe all old faces. So those I have to take the guidance, general guidance from my national president. Then only we can decide who will join, who will not join.
2: बंगाल की जीत हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है और आसाम में जिस तरीके से इतने बड़े जनादेश के साथ एक बार फिर से हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी है, इसका श्रेय दोनों राज्यों की जनता मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जाता है।
3: अ बिग विक्ट्री हियर इन असम, आप इसको किस तरह से देखते हैं और ये उत्तर पूर्व में बीजेपी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है?
4: नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूरा देश के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी बिना अभी डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता। आप जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, तो सभी देश में अगर हमारे जो डबल इंजन का सरकार हो, इससे हर स्टेट डेवलप भी जल्दी जल्दी होगा, विकसित होगा। और असम जिस तरह अभी लास्ट थ्री टर्म में जिस तरह यहाँ पर बदल दिखाई दे रहा है, ये और आगे बदलेगा और अच्छा होगा। और आप जानते हो असम हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा एक सेंटर है, तो ये गेटवे आप बोल सकते हो, तो इसका डेवलप होगा धीरे धीरे, पूरा नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा।
0: Well, as he becomes the only non-Congress chief minister to hold a second term in this state, Himanta Biswa Sarma's tenure will be closely watched for the execution of sensitive promises regarding illegal immigration and, of course, the Citizenship Amendment Act. Our editor-in-chief Rahul Kaval spoke exclusively to Himanta Biswa Sarma after the historic poll results. Here's what he told NDTV.
5: Himanta Biswa Sarma, सेंचुरी वो भी हैट्रिक के साथ, लोगों को लग तमिलनाडु में क्या होगा इस पे अनिश्चितता थी, पश्चिम बंगाल को लेके सस्पेंस था, केरल में कितनी टाइट फाइट होगी, अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफी क्लियर है वो आसाम का, लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी, इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी 73 से 102 पार, स्वागत है और मुबारकबाद।
1: For us, it was expected primarily because in 2024 Lok Sabha election, we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be somewhere around 95 to 100.
5: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं, ये देखिए मैप, उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102, तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है। जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहाँ तक कि गौरव गोगोई भी हार गए। जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया, क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
1: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट इन लास्ट

0: One year, people of Jorhat could see him from a very close quarter. And important point to note that he not only lost his own seat, he lost 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
1: अच्छा हिमंत दा, इस वक्त आप NDTV के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप NDTV इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा सरमा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
0: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग we have become complete minority. So हर चुनाव असम का लोग अपना अस्तित्व का साथ जोड़ते हैं और हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग वोट डालते हैं। So चुनाव जीतने और हारने, ये दोनों का साथ एक बहुत बड़ा बातें छुपा होते हैं कि क्या असम फाइनली इट विल बिकम ए मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट। तो हमारे शंका, हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है। सो दिस इज नॉट ए विक्टोरी, प्रोबेबली ये हमारे जो जूथ चलता है असम का अंदर, इसका और एक चैप्टर है।
1: ये बताएं हिमंत दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से GSDP जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी। आसाम और तेजी से बढ़े, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
0: देखिए, आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक शाइनिंग स्पॉट है और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है। सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट।
2: ऑलराइट, एज ऑलवेज द न्यूज एंड अपडेट्स कंटिन्यू राइट हियर ऑन NDTV 24/7। सी यू इन अ मोमेंट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्यन मसाला।
5: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
6: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Divi.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
5: Straight from the heart of the newsroom,

0: जिस तरह अभी लास्ट थ्री टर्म में जिस तरह यहाँ पर बदल दिखाई दे रहा है, ये और आगे बदलेगा और अच्छा होगा। और आप जानते हो आसाम हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ा एक सेंटर है, तो ये गेटवे आप बोल सकते हो, तो इसका डेवलप होगा धीरे धीरे, पूरा नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा।
1: इट इज़ ए ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू बी इंडक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा। सो एट दिस हिस्टोरिक मोमेंट आई कैन से दिस मच ओनली, दे विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू द মানে ইকোনমি অফ আওয়ার স্টেট এন্ড কালেকটিভলি উইল ট্রাই টু আওয়ার লেভেল বেস টু মেক আসাম এ কন্ট্রিবিউটরি স্টেট ইন দ্য গ্রোথ এন্ড ইকোনমি অফ আওয়ার কান্ট্রি।
2: And also speaking to Hemanta Biswa Sarma is NDTV's editor-in-chief. Rahul Kawal spoke to him about this historic poll result. Let's listen in.
3: Hemanta Biswa Sarma, सेंचुरी वो भी हैट्रिक के साथ, लोगों को लग तमिलनाडु में क्या होगा इस पर अनिश्चितता थी, पश्चिम बंगाल को लेके सस्पेंस था, केरल में कितनी टाइट फाइट होगी। अगर लोग कन्विंस थे कि कहीं पे एक वर्डिक्ट काफ़ी क्लियर है वो आसाम का, लेकिन आपको लग रहा था कि सेंचुरी इतनी बड़ी जीत आपकी दर्ज होगी, 73 से 102 पार, स्वागत है और मुबारकबाद।
4: For us, it was expected primarily because in 2024 Lok Sabha election, we registered victory in 94 assembly seats. So we were around 100 number right from the 2024 Lok Sabha election. So we further consolidated and crossed 100 and we reached 102. So in Assam, it was not a major surprise. It was more or less expected that we will be somewhere around 95 to 100.
3: मेरे पास 2024 के लोकसभा के भी आंकड़े हैं, ये देखिए मैप, उसमें 88 थी बीजेपी की खुद की और अब हो गई हैं 102, तो काफ़ी हद तक जो सैफरन स्वीप थी आसाम में वो और भी बढ़ गई है। जब हैट्रिक के साथ आता है, साधारण तौर पे हैट्रिक के वक्त पे एक एंटी इनकम्बेंसी सी बिल्ड हो जाती है, लेकिन आपने तो एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को धो डाला, कांग्रेस को धो डाला, यहाँ तक कि गौरव गोगोई भी हार गए। जोरहाट में मेरे को याद है आपसे मुलाकात हुई थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, आपने बोला था राहुल मैं तुम्हें लिख के बता रहा हूँ, तुम्हें मुझसे नोट करा लो, इसको मैं हरा दूंगा, कुछ भी हो जाए, गौरव गोगोई जोरहाट में नहीं, तब तो जीत गए, इस बार आपने हरा दिया, क्या किया आपने इस बार जो पिछली बार नहीं हो पाया?
4: आई थिंक दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज नॉट टेस्टेड, बट इन लास्ट वन ईयर पीपल ऑफ जोरहाट कुड सी हिम फ्रॉम अ वेरी क्लोज क्वार्टर एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज ओन सीट, ही लॉस्ट 9 out of 10 in the entire Lok Sabha constituencies. Today, in his constituency, there is only one MLA, that too from an alliance party. Congress has now no MLA from the entire Jorhat Lok Sabha constituency. So it was not a defeat, it was a complete defeat in that sense of term.
3: अच्छा हिमंत दा, इस वक्त आप एनडीटीवी के सारे चैनलों पे लाइव हो, आप एनडीटीवी इंडिया पे भी लाइव हो, इसलिए मैं आपसे हिंदी में सवाल कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है कि आप हिंदी में जवाब दें ताकि हम सब जगह आपको अच्छे से दर्शकों को दिखा भी पाएं। पहले जिस तरह की डोमिनेंस आपकी आसाम में हो गई है, वैसे बहुत ही कम प्रेसिडेंट्स हैं बीजेपी में और इस वक्त की राजनीति में जो कि अपने राज्य को और अपने पूरे क्षेत्र को डोमिनेट करता है। जब आप अपने प्रोग्रेशन को देखते हैं, आपके हिसाब से असम की जनता ने इस मैंडेट के जरिए हिमंत बिस्वा शर्मा के राजनीतिक भविष्य के बारे में क्या मैसेज दिया है?
4: मेरा नहीं लगता है कि आपको असम का रिजल्ट कोई व्यक्ति का भविष्य का साथ जोड़ना चाहिए। असम इज ए वेरी स्पेशियल केस। राहुल, मैं आपको भी जब भी मिलता हूँ हमेशा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। असम का लोग एक बहुत बड़ा समस्या में है। हम लोग अपना आइडेंटिटी को लेके, हमारा भविष्य के लिए बहुत ही चिंतित रहता हूँ, बिकॉज वी आर नाउ लूजिंग द डेमोग्राफिक बैटल बहुत फास्ट। टुडे असम विल हैव 40% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दिस सेंसस, रफली अराउंड 40%। 12 से 13 जिला में हम लोग

0: we have become complete minority. So har sunao Assam ka log apna astitva ka saath jodte hain aur hamare identity ko protect karne ke liye log vote dalte hain. So sunao jeetne aur haarne ye dono ka saath ek bahut bada baatein chupa hote hain ki kya Assam finally it will become a Muslim majority state. तो हमारे शंका हमारे चिंता देश का प्रदेशों से काफ़ी अलग है. सो दिस इज़ नॉट ए विक्टोरी प्रोबेबली ये हमारे जो जूत चलता है असम का अंदर इसका और एक चैप्टर है.
1: ये बताएं हेमंता दा कि हैट्रिक होने के बाद इस बार के आपके टर्म में आपकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्योंकि पिछले टर्म में भी हमने देखा कि जिस तरीके से GSDP जो स्टेट की ग्रोथ की विकास दर है वो ज़्यादा थी. आसाम और तेजी से बढ़े नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड हो, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्या लोग आपसे एक्सपेक्ट करें?
0: देखिए आसाम एक भारत के उभरते हुए इकोनॉमी है, एक एक शाइनिंग स्पॉट है और आसाम में बहुत तरक्की हो रहा है, बट इसकी स्पीड को एस्केलेट करना है. सरकार होने दीजिए, विल कम आउट विथ ए वेरी पॉजिटिव एजेंडा और मुझे लगता है और 5 साल असम में यही पेस में काम होगा तो द आइडेंटिटी ऑफ असम विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट.
2: लेट्स ऑल्सो गेट यू द वेरी लेटेस्ट व्हेन इट कम्स टू द बीजेपी स्टॉर्मिंग फॉर दैट थर्ड स्ट्रेट विन व्हेन इट कम्स टू असम अंडर द लीडरशिप ऑफ हिमंता बिस्वा शर्मा हु इज इमर्जिंग now as one of BJP's biggest national power centers. Let's get you more on the second time chief minister of Assam.
3: Three elections, three victories, one man at the center of BJP's Assam juggernaut. Hemanta Biswa Sarma, the architect of BJP's northeast expansion, has now delivered a hat-trick in Assam, crushing the Congress, the very party where his political journey began.
0: Hamara jeet ka sehra Pradhan Mantri Narendra Modi aur Assam BJP ka karyakarta tamam karyakarta ohi jeet ka phase hai. और जीत का श्रेय किसको जाते हैं? असम का जनता को. असम का जनता ने हमें भरपूर आशीर्वाद दिए.
3: When former Assam Chief Minister and Congress veteran Hiteshwar Saikia was trying to bring the youth to the party fold after the rest of 1980s of the Assam agitation, he found his man in Hemanta Biswa Sarma. A young student activist in those days, Sarma, who had built a name for himself in campus politics by then, was associated with the influential All Assam Students Union. Since joining the Congress in 1991 and quitting it in 2015, he remained the go-getter for both Saikia and later Tarun Gogoi. Once a key Congress troubleshooter, Sarma's dramatic exit from Congress in 2015 changed Assam's political destiny. Denied space in Congress, Hemanta crossed over to the BJP and rewrote the state's power equations, from strategist to kingmaker to undisputed king. He first helped BJP end decades of Congress dominance in 2016. In 2021, he became chief minister. And now, by leading BJP to a third consecutive triumph, Sarma has cemented his legacy as Assam's most powerful political force. His politics blends aggressive Hindutva, regional nationalism, governance delivery, and sharp political messaging. From anti-encroachment drives to welfare outreach to projecting strong leadership.
4: अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या क्या आपत्ति है? मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा. बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा.
3: This victory is special for Sarma as he has swept the state as an incumbent chief minister, a direct stamp of voter on his rule. For Congress, the defeat is especially painful because a man dismantling its base is its own former general. Sarma's rise symbolizes not just BJP's strength, but Congress's long decline in Assam. Within BJP, Sarma's stock is soaring. Prime Minister Modi and Amit

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: ये पद्मजा, मुझे तो लगता है कि अब इस देश में एक दूसरे तरह की नैरेटिव पर चर्चा होनी चाहिए। हिंदुत्व तो और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स किसी भी राज्य को गुजरात मॉडल में बदल सकती है, और ये मैं जो कह रहा हूँ इसको इस पर डिबेट बहुत कम हुई है। हिंदुत्व तो और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स किसी भी स्टेट को गुजरात मॉडल में बदल सकती
1: हर्षवर्धन जी, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल आपने यहाँ पे टर्म यूज कर दिया है। गुजरात मॉडल के ऊपर तो
0: है।
1: इतने लंबे लंबे लेख लिखे जाते हैं दैट दिस इज द वर्स्ट मॉडल ऑन द प्लैनेट, द अदराइजेशन, द गुजरात मॉडल इज द डीमन मॉडल।
0: मैंने बहुत सोच समझ कर ये फ्रेज इस्तेमाल किया है, ये शब्द इस्तेमाल किया है, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो उत्तर प्रदेश एक्सटेंशन ऑफ गुजरात मॉडल है, बंगाल एक्सटेंशन ऑफ गुजरात मॉडल है, असम कॉपी पेस्ट ऑफ गुजरात मॉडल है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक मतलब इसको थोड़ा सा मैं अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, क्योंकि दिखने में लगता है कि बंगाल और असम एक जैसा है, बंगाल और असम की जीत एक जैसी बिल्कुल नहीं। बंगाल में नंबर्स और उसके लिहाज से देखें, मिनिस्ट्री में कम लोगों को लिया तो ठीक है, लेकिन बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पास अभी प्रूव करने की बहुत लंबी यात्रा तय कर, हेमंता विश्व शर्मा ने प्रूव कर दिया है, वो अभी इस जगह पर खड़े हैं जहां वो तय करते हैं कि ये चार मिनिस्टर होंगे, ये हमारा विधानसभा अध्यक्ष होगा। हाँ, पार्टी के लिए वो कहते हैं कि हमें अपने अध्यक्ष जी से पूछना है, पार्टी को पूछना है, लेकिन वो सब कुछ तय करते हैं। शुभेंदु को अभी इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, अभी तो शुभेंदु अधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर सब कुछ वो दिल्ली तय करता है, दिल्ली ही तय करेगा, अभी समय लगेगा वो अर्न करने में। दूसरा, बंगाल में अभी पहली बार उनकी सरकार बनने जा रही, असम में तीसरी बार ये सरकार बन रही, ये रिकॉर्ड है। और अगर उसको नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के लिहाज से देखें या नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिहाज से देखें, तो अब वहां पर सैफरन स्टैंपिंग हो चुकी है, यानी वहां वो वाली सारी मुश्किलें खड़ी खत्म हो गई हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डेवलपमेंट एंड हिंदुत्व, और अगर आप ध्यान से देखें तो पूरे कैंपेन के दौरान जो हेमंत विश्व शर्मा निशाने पर थे, हम लोगों ने भी आलोचना की थी बहुत से मुद्दों पर, बहुत से उनकी जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल कैंपेन वाला वो वीडियो था ना जिसमें एक मुस्लिम दिखता है और हेमंत विश्व शर्मा गोली चला रहे हैं, तो हम लोगों ने उस पर बात की थी। लेकिन ओवरऑल कहें तो हिंदुत्व एंड डेवलपमेंट का जो मॉडल है, ये फ्लेवर ऑफ द डे है, ये गुजरात मॉडल पूरे देश में इंप्लीमेंट हो रहा है, और हेमंत विश्व शर्मा पूरी तरह से कमांड में है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का पूरा विश्वास उनके ऊपर है।
1: एंड रिमेंबर, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस हेमंत विश्व शर्मा टेकिंग ओवर, सिंस द टाइम दैट ही हैज जॉइंड द बीजेपी, दैट द बीजेपी गॉट अ फुल मेजोरिटी ऑन इट्स ओन। दे हैव गॉट 80, व्हिच मींस दे आर वेल पास द हाफ वे मार्क, एंड येट दे हैव टेकन देयर एलाइज अलोंग। लास्ट टाइम फॉर द टू इलेक्शंस दे वर स्टक at 60, they were crossing the halfway mark along with their allies. This time they have 102. Almost 65% of the seats were won by the BJP alone. Remember, they contested only 90 and yet they ended up winning 80. That gives you an idea of the strike rate of the BJP under Hemanta Biswa Sarma this time around. And it's also about the next line of leadership that is being prepared. Who do you see on stage today? You will see the likes of not just Yogi Adityanath, Devendra Fadnavis, Suvendu Adhikari, Hemanta Biswa Sarma. You will also see people like Rekha Gupta. You will see people like a Mohan Yadav. You will see somebody like a Pushkar Dhami. All of them people who are either in their early 50s or maybe just about their late 50s. Is this also the next line of leadership? Let's listen in to what Rekha Gupta and Pushkar Dhami told us.
2: कितना आज आपके लिए बड़ा दिन है?
3: हम सबके लिए बहुत सुखद दिन है। असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये हेमंता दा की मेहनत है जिन्होंने असम के हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही सुंदर कार्य किया, और जनता ने भी अपना पूरा विश्वास और आशीर्वाद उन्हें दिया, मोदी जी की सरकार को दिया। हम ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हैं जनता को जिन्होंने विकास की है, राह पकड़ी
2: है।
3: बंगाल में भी बड़ी जीत हुई है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता है और उनके किए हुए कामों को आगे बढ़ाना चाहता है।
2: महिलाओं ने भरपूर वोट दिया है, आपने भी बहुत कैंपेन किया दोनों राज्यों में।
3: अब महिलाएं समझ रही हैं कि उनका लाभ, उनका सम्मान किस के साथ रहने में है, तो मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को धुरी मान करके अपनी एक हर एक योजना बनाई, उनके लिए इतना काम किया उनके सुखद और सम्मानपूर्ण जीवन के लिए, तो महिलाएं जरूर अपने साथ किए हुए अच्छे व्यवहार का पुण्य प्रताप देती हैं।
2: इतना बड़ा दिन है आज आपके लिए?
4: बहुत बड़ा दिन है, दिख ही रहा चारों तरफ आज जिस प्रकार का माहौल है, लोगों को खुशी है।

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: What's the drama?
2: Full of these people.
1: Kolkata tram.
3: The highest number of voters.
4: Tamil Nadu votes decisive.
5: Tafra tafri ka mahal hai. Udhampur patrao kya gaya ha.
6: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
7: TVK headquarters here.
8: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
9: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
10: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
6: So I really love the channel. I saw Shiv sir and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
11: Happy meeting NDTV team here.
12: Thanks for NDTV.
13: Padmija Joshi.
14: Shreya Shide.
15: This is Shreya Ghosh.
16: Rapandeep Chaudhary.
17: Manogya Loiwal.
18: All right, Himanta Biswa Sarma, in fact, has reached the veterinary college ground in Khanapara for the swearing-in ceremony. We'll play out those visuals in just a second. But any moment now, in less than a minute, we are going to have the swearing-in ceremony begin. You've got the entire lineup of the BJP, right from the top leadership, CMs of the BJP, the NDA from across the country. Now you've got 17 CMs from the Bharatiya Janata Party in various states. They, along with their deputies, Eknath Shinde, Devendra Fadnavis, Rekha Gupta, Mohan Yadav, all of them present there. The dignitaries are now on stage. Shivraj Singh Chauhan, you can see Lallan Singh. So the top leadership of the NDA already present there. CMs, deputies, ministers, MPs from across the country are there. Let's quickly listen in to Devendra Fadnavis and Eknath Shinde and we'll come right back.
19: ये बहुत बहुत ही खुशी का दिन है. तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर और हमारे जनप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी पर जो विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं आसाम की जनता को प्रणाम करता हूं और मेरा विश्वास है 10 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आसाम बदला है अब ये 5 साल उससे भी ज़्यादा असम के विकास के 5 साल हो गए और देश के भी विकास में एक बहुत अहम भूमिका असम निभाएगा ऐसा मेरा विश्वास है.
20: बहुत ही खुशी का माहौल है असम में और आज हेमंत बिस्व शर्मा जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं. ये बहुत ही आसामवासियों के लिए खुशी का माहौल है आज देख रहे हैं हम. और ये हिस्टोरिक हैट्रिक है भारतीय जनता पार्टी NDA की और हेमंत बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार.
18: ओके, लाइव शॉट्स, द चीयर्स गोइंग अप एज द प्राइम मिनिस्टर इज देयर ऑन स्टेज एंड द स्वेरिंग इन इज अबाउट टू बिगिन एनी टाइम नाउ. हर्षवर्धन जी, आप गुजरात मॉडल की बात कर रहे थे. इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उत्तराखंड में यूसीसी है, गुजरात में यूसीसी बनाया गया है और अब असम माइट बिकम द लेटेस्ट स्टेट टू एक्चुअली गेट इन द यूसीसी. सो गुजरात मॉडल इन मोर देन वन वे.
21: पद्मजा जी, असम, उत्तर प्रदेश और उसमें बंगाल को भी जोड़िए,

0: and the same kind of, the similar kind of scenario, in fact, we witnessed in the year 2025 as well. Now, needs to be seen that what actually the education minister has to say on this. Previous year, we saw that multiple press conferences, press briefings were held. And in fact, not just that, the minister also, in fact, ensured that justice will be done to all those students, aspirants who appeared in the examination. Now, needs to be seen that what is the next date of examination? When will the examination be held next? And what will be the official stand of the government, of the, in fact, education minister, as far as this entire issue is concerned? But let me once again show you these visuals, in fact, 360 degrees, so as to give a view about what is happening over here. In fact, we were speaking that this entire area has been barricaded. The placards have been brought over here. You can see a doctor's degree on sale, and they are writing NEET 2026 scam. Now, also needs to be seen that other leaders of the Congress party, will they also be joining the protest across India? Because what they are saying that not just in the national capital, but they will be holding the a protest pan India as well. And in fact, we'll also in fact try to speak to the NSUI chief, who is in fact we'll be joining with him in just few seconds, so as to what he has to say over here. We would just request you to just explain that what is the reason, in fact, protest. Of course, the people need that you're holding the protest, but what is your main demand that you are holding protest over here today?
1: देखिए, सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से सरकार ने बड़ी आसानी से कह दिया कि पेपर रद्द होता है, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने पूरी ईमानदारी से, मेहनत से जो है ये पेपर की तैयारी की थी और पेपर दे के आए थे, वो सेंटर से जैसे ही बाहर आते हैं उनको पता लगता है कि 600 नंबर का जो पेपर है वो पहले से ही गैस पेपर के रूप में जो है विद्यार्थियों के पास था, टेलीग्राम।
0: आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था यहाँ पे, हमें याद है, उसके सामने हम।
1: मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पिछली बार भी हमने जो है प्रोटेस्ट किया था, एनएसयूआई ने पूरे देश में डिमांड की थी, लेकिन किन लोगों ने पेपर चोरी किया था, कौन लोग उसमें शामिल थे, आज तक सामने नहीं आए।
0: क्या आप लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट?
1: पूरे देश के अंदर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, सरकार से जवाबदेही मांगेंगे, सरकार अपनी जवाबदेही तय करे और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सरकार जो है, जो धर्मेंद्र प्रधान है, वो अपने पद से इस्तीफा दें।
0: क्या कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ जो नेता है, वो भी आपके साथ इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे, उनसे कुछ बातचीत हुई है?
1: पूरे देश के अंदर एनएसयूआई जो है अग्रेसिव मोड पे पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाएगी, आंदोलन करेगी, क्योंकि पेपर को डिसॉल्व करना या उसको रद्द कर देना सोल्यूशन नहीं है। क्या विद्यार्थी इसी तरीके से इस देश के अंदर ठगा जाएगा कि एक पेपर आप ईमानदारी से नहीं करा पा रहे हैं, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, पूरे देश के अंदर ऐसा कोई पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे के अंदर जो हमारे छात्र,
0: ये बात आती है तो फिर राजस्थान में हुए पेपर लीक की भी बात बीजेपी करती है, इसका आप जवाब कैसे देंगे?
1: जो भी पेपर लीक करे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल की सलाखों में होनी चाहिए और कठोर कानून बनने चाहिए और उन कानूनों की सख्ती से पालना होनी चाहिए। मैं ये कहूंगा कि पेपर लीक जो करते हैं उनकी कोई जाति नहीं होती, उनका कोई मजहब नहीं है, लेकिन सरकार जो वर्तमान में है उसकी जवाबदेही होती है। आगे हम पूरे देश के अंदर जाएंगे, नौजवानों को साथ में लेंगे और इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस पेपर माफिया के सरकार के खिलाफ जो है मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे।
0: All right, so in fact, that was NSUI President Vineet Jakhar, who in fact briefed about what is their next plan of action and how they are going to carry forward this protest, not just here in Pan India as well. Back to you.
2: Tanushree, thanks for joining us live. We'll keep coming back to you for more, but we're going to be slipping to a short break. That's the latest that we have for you. The NTA has called off the exam, the NEET exam that was held on the 3rd of May. New dates will be announced, and you have protests taking place, the heat on the central government, especially the education minister. More on this after a short break. Stay tuned to Breaking Ground.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: पेपर आउट होते हैं, आर्मी में होते हैं, जुडिशरी में होते हैं, तो बहुत ही ऐसी गैंगें बन गई है देश के अंदर जिनका काम यही है। तो इस पर सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए रोकने के लिए। और तय तक क्या है, लॉजिकल कंक्लूजन तक क्या है कि वास्तव में ये कहाँ से गड़बड़ी शुरू होती है, कैसे होती है, ये बहुत जरूरी है जिससे कि आगे रुक सके। नौजवानों का बच्चों का भविष्य इसमें जुड़ा होता है और उसके अंदर जितना परवाह नहीं करते हैं। अब दूसरी बार ये आउट हो गया आपका ये नीट का पेपर भी तीन साल के अंदर, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। राजस्थान सरकार को मैंने परसों ही कहा था कि एसओजी जो है वो छिपा क्यों रही है। राजस्थान पेपर छपा है, मैंने सुना है राजस्थान पेपर छपा है, यहाँ पर आउट हुआ है जयपुर सीकर के अंदर, उसके बाद में एसओजी छिपा क्यों रही थी। कुछ लोग अरेस्ट करके बैठा दिया उनको, FIR दर्ज क्यों नहीं थी, ये मैंने परसों ही कहा है। अब जब पूरा दबाव पड़ा सरकार पर, भारत सरकार पर, राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, प्रियंका जी ने किया, कई नेताओं ने किया, तब जाकर आंखें खुली है और NTA ने भी इसको रद्द किया है।
1: मगर ये नई बात भी तो नहीं है अशोक जी, ये पहले भी हुआ है, आपके सरकार के नीचे भी ये लीक्स की बातें हुई है, इट्स अ नेशन वाइड इशू। नाउ द कांग्रेस, आपकी पार्टी बोल रही है कि व्हेन इट कम्स टू द CBI प्रोब दिस इज नॉट इनफ, आपको क्या कहना है उस पर, CBI प्रोब इस पे इनफ नहीं रहेगी?
0: देखिए मैं खुद स्वीकार कर रहा हूँ ना, हमने भी अरेस्ट किए थे इमीडिएटली, पेपर रद्द किया था, उसी वक्त से मैंने भारत सरकार को अपील करी थी और जब सरकार बदल गई तो लगातार दबाव बना रहे हैं कि भाई ये जो गैंग बनी हुई सब जगह पर, सरकार की बदनामी भी होती है और ये छात्रों के लिए भी नौजवानों के लिए उचित नहीं है, तो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और राजस्थान में हमने कानून पास किया है जो कंट्री में कहीं नहीं है, जिसमें उम्र कैद की सजा रखी उसके अंदर और 10 करोड़ का जुर्माना उसके अंदर। ऐसा कानून हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनाया जो मैंने बनाया था, 10 करोड़ का जुर्माना, आजीवन कारावास बनाया मैंने कानून। तो भारत सरकार को चाहिए कुछ कड़े कदम उठाए,
1: गहलोत जी ये क्यों दोबारा होते जा रहा है, इज माई क्वेश्चन टू यू, ये पहली बार तो नहीं हुआ, ये सालों से होता जा रहा है, ये क्यों हो रहा है?
0: ये इसलिए हो रहा है कि ऐसी गैंग बनी हुई है लोगों की, उनका बिजनेस हो गया इस प्रकार से, वो कहाँ से चुराते हैं, कैसे चुराते हैं, प्रेस से लेते हैं या कहाँ से लेते हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें तय तक जाएंगे तब जा करके ये पेपर लीक वाली बीमारी खत्म हो सकती है।
1: गहलोत जी आप क्या, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस कि क्या रिलीफ मिले स्टूडेंट्स को जब तक एग्जाम फिर से नहीं होल्ड किया जाए?
0: रिलीफ तो क्या मिल सकती है इनके, कोई बार बार फीस ले तो फीस ले इनको, और तो क्या कर सकते हैं, फॉर्म भरने की उतनी पड़े जो पहले फॉर्म भरे हुए उन्हीं को काम ले, हमने रास्ता नहीं किया था, और तो क्या रिलीफ दे सकते बच्चों को, पर वो कितनी उनपे क्या गुजर रही होगी बच्चों पर जिन्होंने रात दिन मेहनत करी है एग्जाम देने के लिए नीट का, और पेपर आउट हो गया और वो कैंसिल हो गया एग्जाम।
1: एंड बिफोर आई लेट यू गो गहलोत जी, आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि BJP गवर्नमेंट ने सप्रेस किया हुआ है स्कैंडल को, अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के पास क्या प्रूफ है इसके लिए?
0: अरे भैया तो मालूम पड़ चुका है राजस्थान के अंदर ही यही पेपर छपे हैं, यहीं पर सीकर और जयपुर से खबर आ रही है, सुन रहे हैं पब्लिक से भी कि यहाँ पर जो है मीडिया लगातार यहाँ बता रहा है कि पेपर यहाँ छपे हैं, यहाँ बटे हैं सीकर में जयपुर के अंदर। सच्चाई क्या है तो सरकार बताए आगे आकर के, ये छिपा क्यों रहेगा। मेरा मानना ये है कम से कम FIR दर्ज क्यों नहीं थी इन्होंने, अब जाके जब रद्द किया है तब जाके अब FIR दर्ज करेंगे, अब इनको करनी पड़ेगी। तो जब मालूम पड़ गया इनको जानकारी प्राप्त होगी, पहला काम होता है FIR दर्ज करना।
1: गहलोत जी ये जो नीट एग्जाम है इनमें, इसमें रिफॉर्म लाना चाहिए आपको लगता है?
0: बिल्कुल बिल्कुल ना,
1: कैसे
0: नीट पे क्यों लाए, खाली नीट पे क्यों लाए, हर एग्जाम में रिफॉर्म ऐसे होने चाहिए जिससे कि ये बीमारी नहीं हो। 3 मई को पेपर आउट हुआ, एग्जाम हुए हैं 3 मई को एग्जाम हुए हैं और 2 सप्ताह हो गए, अब जाके ये रद्द कर दिया पेपर, तब बताइए क्या बीतती है बच्चों पर।
1: All right, Mr. Ashok Gehlot there. Thank you for speaking with us here.

0: On breaking ground, the Congress doubling down on the central government over this announcement amid the nationwide outrage, student protests and allegations of paper leaks and examination irregularities. The National Testing Agency has cancelled the NEET examination conducted on the 3rd of May and announced that the medical entrance test will be held again on fresh dates to be notified separately. Following the cancellation, the National Students Union of India, the NSUI, is staging protests against the central government. I believe we have Mr. Karthi Chidambaram also joining me on the phone line. Mr. Chidambaram, thank you for speaking to us here on Breaking Ground. I want to understand what your first reaction is to this news coming in of the NEET exam now being cancelled.
1: It's shocking. We in Tamil Nadu have been consistently saying that we don't need the NEET exam. The NEET exam should be scrapped once and for all. This is yet another reason why the NEET should not continue. The NTA has no integrity, no competence. This is happening time and again. They're going to put more than 2 million students and their families in stress all over again. Heads must roll, accountability must be fixed. And I think the Prime Minister must step in, show leadership and fix accountability. The problem in India is every time a failure happens, nobody is held accountable. And we just the system just keeps doing the same thing all over again. This is a systemic problem and nothing is getting fixed. And they need it.
0: Mr. Chidambaram, if you can hear us. All right, Mr. Chidambaram, do you believe that the NEET leak reflects a systemic failure? And how do you think one can reform that failure?
1: If it's systemic failure, it's a failure of the leadership of this government. The government must take responsibility. If there are many systemic failures which keep occurring in India, what is that? And eventually the buck stops with the government. The NTA is a government. Of it. There is a minister, there is a secretary, and above all that, there is a prime minister. Somebody must take responsibility. Somebody must keep the tables. And NEET must be scrapped. There is no reason for us to have this exam. All those who succeed in this exam are those who are able to afford to go to very expensive coaching schools after taking a year off after the 12th standard exam. And for an examination system which gives no value to the 12th standard marks, it has no place in our educational system and it must be scrapped.
0: All right, Mr. Chidambaram, thank you for joining me here on Breaking Ground. I believe we have Mr. Anand Kumar, founder of Super 30, on the phone line with me. Mr. Kumar, thank you for speaking to us here on Breaking Ground. Your first reaction to the news coming in, we have very angry voices from the ground, even from political parties, slamming the NTA on what has happened.
2: ये बहुत ही दुख की बात है कि ऐसी घटना घटी और ये पहली बार नहीं है, कई दफा से ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन इसमें सबसे जरूरी है अभी कि हम लोग इसमें राहत महसूस करिए, सोच कर कि चलिए परीक्षा कैंसिल हो गई है, अपराधी पकड़े गए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स जो परीक्षा दिए हुए हैं, काफी घबराए हुए, उनके पेरेंट्स जो काफी डरे हुए, उन लोगों को हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि घबराइए मत, परीक्षा दोबारा हो रही है। अभी ज्यादा सोचिए नहीं, बल्कि दूसरी तरह से ये सोचिए कि चलो एक मौका मिला है, पूरी ताकत के साथ फिर से तैयारी में आप जुट जाइए।
0: कुमार जी, लेकिन क्या रिस्पाइट मिल सकता है स्टूडेंट्स को टिल द एग्जाम इज हेल्ड अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट?
2: गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट तो चाहिए थी पहले से कि इसको इतना सख्ती रख के कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो। कोचिंग जो चल रहा है, जो बाजारवाद हो गया है, जो कोचिंग माफिया लोग हैं वो पैसे कमाने के लिए किसी हद तक गिर रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि उनकी मिली भगत, तो उन पर कमान पहले से कसना चाहिए। जब परीक्षा होती है, ये घटना घटती है, तब सरकार हरकत में आती है। अरे भाई, एग्जामिनेशन के 6 महीना पहले से तैयारी करिए कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये बात है।
0: कुमार जी,
2: हमारा ये निवेदन है सरकार
0: जी, लेकिन आपको लगता है नीट शुड कंटिन्यू करंट फॉर्म में कि इसमें बड़ा बहुत सारा रिफॉर्म लाना चाहिए गवर्नमेंट को?
2: बहुत बड़ा रिफॉर्म लाना चाहिए, लेकिन ठीक है, पेन पेपर से हो, ऑनलाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सख्त सरकार रहेगी, कड़ी सजा देगी, जिसकी मिली भगत होगी उसको लंबा कारावास होगा, उसको लंबा जेल होगा, तो एकदम डेफिनेटली कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, उनसे गुहार भी लगा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, ऐसे लोगों को तुरंत जेल भेजा जाए और लंबी सजा हो, ताकि कोई दोबारा हिम्मत न करे।
0: और ये जो स्टूडेंट्स
2: हैं, कहना चाहेंगे
0: जी कुमार जी, ये जो स्टूडेंट्स है उनका विश्वास वापस कैसे गवर्नमेंट ला सकती है?
2: उसके लिए उनको अच्छे से इस बार परीक्षा करवानी चाहिए और अगली बार ऐसा ना हो इसकी कोशिश

0: करनी चाहिए। और केवल नीट की परीक्षा नहीं बल्कि जितने पेपर होते हैं गवर्नमेंट के, कोई भी ऐसी क्वेश्चन लीक की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार को इसकी कोशिश करनी चाहिए ताकि विश्वास दोबारा ला सके। और मेरा विश्वास है कि सरकार जरूर ऐसा करेगी, बच्चों का ध्यान रखेगी। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को, उनको पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि निराश मत होइए, घबराइए मत, घबराने से और चीजें खराब होती है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में पेशेंस बनाए रखिए और परीक्षा की तैयारी करिए, जो होगा अच्छा ही होगा।
1: जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द फोन लाइन देयर, मिस्टर कुमार देयर स्पीकिंग टू ब्रेकिंग ग्राउंड एनडीटीवी 24/7 हियर ऑन दैट बिग न्यूज दैट इज कमिंग इन। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल रिएक्शंस ऑन दिस, यू आर आल्सो गेटिंग अ लॉट ऑफ रिएक्शंस फ्रॉम द ग्राउंड, यू हैव प्रोटेस्ट दैट कंटिन्यू आउटसाइड द एनएसयूआई एट द मोमेंट। वी विल ट्राई एंड कनेक्ट विद आवर रिपोर्टर्स ऑन द बिग स्टोरी, बट ऑफ कोर्स देयर आर क्वेश्चंस ओवर द अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एग्जामिनेशन प्रोसेस। द डिसीजन टू स्क्रैप द एग्जाम वॉज टेकन विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इन examined in coordination with central agencies and findings shared by law enforcement authorities. On the ground, there is anger. Of course, this affects and impacts the morale of students who sat for that exam on the 3rd of May. I have Mr. Abhay Anand, educationist, joining me on the phone line. Mr. Anand, let's talk about the students first. When it comes to this big news that has just come in, it impacts the morale of lakhs of students.
2: Yes, it does.
1: And how do you get that, you know, that trust back? Elaborate on that.
2: The only way in which it can be done is getting a fair exam conducted.
1: And that has been difficult as of now with the leaks taking place, Mr. Anand.
2: Yes, I know. It's not the first year. Every year is the same thing which is repeated again and again. And the government is not willing to take lessons. In fact, the style of the leak keeps changing every year.
1: What do we learn from this then, Mr. Anand? There is a huge network at play. And it seems that they're not being caught in time. Is there enough accountability when it comes to the NEET exam? Do you think a reform is required? A rehaul is required when it comes to central examinations like the NEET?
2: There is one exam which is of this magnitude, and that is the JEE.
3: We can see the progress and development. So I'm wishing him and his all the ministers who were sworn in today all the very best.
1: Reactions coming in there. Harsha still with me. Harsha, there's anger on the ground. What are we hearing in terms of students in Rajasthan when it comes to this exam? What's the latest you have for us? We're seeing massive security deployment in Delhi, but we want to get the latest from you.
4: Yeah, so well, absolutely, my colleague Sushant and I have been following this case very, very closely. And now what we are saying is that, you know, I have with Sushant here with me. So Sushant, the entire thing is that, the paper leak, it started circulating. We cannot call it a paper leak yet, but there is definitely a suspicion that a large number of questions matched. Now, if you were to go through it, there's a student who's doing his MBBS in Kerala, and he gave this paper to his father, who runs a coaching institute. The complaint came from Rajasthan, but exactly how he got the paper is something we are not clear about either.
5: देखिए मैम, एसओजी की जो शुरुआती जांच है उसमें जिस तरह के तथ्य सामने आए और जो एनटीए को साक्ष्य उन्होंने सौंपे हैं, एसओजी के मुताबिक, एसओजी की जांच के मुताबिक ये पता चला है कि जो जांच का दायरा था वो शुरू हुआ परीक्षा से एक दिन पहले, जिस तरह से ये गैस पेपर जिसको कहा गया वो सर्कुलेट हुआ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जांच का दायरा आगे बढ़ने पर पता चला कि केवल एक या दो लोग इसमें नहीं जुड़े हुए हैं बल्कि पूरी कड़ियां हैं। और
1: सब आयशा, डू स्टे विद मी, आई बिलीव वी हैव मिस्टर किरोरी लाल मीना, राजस्थान मिनिस्टर, ज्वाइनिंग मी ऑन द फोन लाइन। मीना जी, आपसे सवाल ये है कि इस लीक के बारे में आप हमें और क्या बता सकते हैं जिसकी वजह से नीट का एग्जाम अब कैंसिल हो गया, खारिज हो गया?
6: देखो, ऐसा है, राजस्थान में हम सवा दो साल से सत्ता में हैं, जितने भी स्टेट में पेपर हुए कोई भी लीक नहीं हुआ, जबकि पिछले राज में 18 में से 17 पेपर लीक हुए थे। किंतु ये अनफॉर्चुनेट सीन है कि सीकर में ये पेपर लीक हुआ और लोगों ने जानकारी दी पुलिस को, तो एसओजी एक्टिव हुई और एसओजी की शक्ति का परिणाम हुआ कि उन्होंने प्रमाण दिए एनटीए को, जिसके आधार पर एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी और सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। इससे बड़ी संवेदनशीलता कोई सरकार की हो नहीं सकती। और जो प्रतिपक्ष है वो बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, इसलिए अब जो भी मुलजिम है, चाहे सीकर में हो चाहे केरल में, सीबीआई उसको छोड़ेगी नहीं, उसको कानून का शिकंजा तक कसा जाएगा।
1: तो इंक्वायरी कहाँ तक गया है अभी तक सर इसमें?
6: अभी तक तो हमारी जो एसओजी है उसने ये पुख्ता प्रमाण दिए थे कि पेपर लीक हुआ है। अब आगे की जांच सीबीआई करेगी, तभी जाके पता लगेगा कौन किस किस गहराई तक जुड़ा हुआ है।
1: लेकिन मीना जी, यू हैव द कांग्रेस कमिंग आउट एंड सेइंग, अशोक गहलोत जी से बात हुई है, सचिन पायलट से, वो बोल रहे राजस्थान गवर्नमेंट किसी को अरेस्ट ही नहीं करना चाहते हैं।
6: ना, ऐसा गलत है। देखो वो एक अधकचरी बात कह रहे हैं, प्रीमेच्योर टास्क कह रहे हैं। एक दिन में एसओजी ने लगा के पूरी गंभीरता से जांच करने के बाद में एनटीओ को रिपोर्ट किया, जो हमारी एसओजी है राज्य की एजेंसी, उसके आधार पर ही पेपर जो लीक माना गया और वो रद्द हुआ है, और उसी के आधार पर सीबीआई जांच के आदेश तत्परता से सरकार ने दिए। सरकार बड़ी गंभीर है, उनके आरोप बेबुनियाद है।
1: मीना जी, राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए थे जब लीक के बारे में पता चला था?
6: पता लगते ही एटीएस और एसओजी की जांच करवाई थी और एसओजी ने जांच करके एनटीए को बता दिया। अगर लापरवाही होती राज्य सरकार की एजेंसी की, जैसा कि प्रतिपक्ष कह रहा था दबाने का काम कर रहे हैं, तो आज जो एक्शन केंद्र ने लिया या एनटीए ने लिया वो नहीं होता।
1: लेकिन कांग्रेस कह रहा है कि रिपीटेड लीक्स होते हैं आपके स्टेट में, जो ये कहलाता है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है।
6: ना, रिपीटेड पेपर लीक हुए थे पिछले राज्य में, 18 में से 17 पेपर। हम एफआईआर दर्ज कराने जाते थे, एफआईआर दर्ज नहीं करते थे। एक बार तो मैंने 3 दिन तक धरना दिया था, एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके लगे। हमारे राज्य में 76 थानेदार जेल के सीखों में बैठे हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर जेल की हवा खा रहे हैं, 1 पीएचईडी मिनिस्टर जेल की हवा खा रहा है, सुबोध अग्रवाल जो एसीएस थे वो जेल में है। इसलिए हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, मैं इसको नकारता हूं उनके आरोपों।
1: बिफोर आई लेट यू गो मीना जी, आपका क्या संदेश रहेगा स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान से जिन्होंने ये एग्जाम दिया है?
6: मेरे स्टूडेंट्स के लिए यही संदेह कि हाँ, कुछ समय के लिए उनका नुकसान जरूर हुआ है, पुराना उन्हें कुछ दिन के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उनका भविष्य बर्बाद होने से बच गया। इसमें खजूरा घुस जाता, धन हो एसओजी का जिसने त्वरित कार्रवाई करके सही रिपोर्टिंग कर दी और अभ्यर्थियों का भविष्य बच गया। अभ्यर्थियों को बड़े विश्वास के साथ पुनः परीक्षा में बैठना चाहिए और अपनी कॉम्पिटेंसी के आधार पर उनको चयन होना चाहिए।
1: All right, Mr. Meena, thank you for joining us live. That's Rajasthan's minister who is defending the claims being made by the Congress, where the Congress has said that the Rajasthan government is scared to take any action against the accused and there will be no arrest in this case because of that reason. I still have Harsha with me and Tejshree, cutting across to the national capital where Tejshree is standing by. I also have Tanushka joining us live at this point. Tanushka, what's the latest that we have on this? Have you heard from the government on the NTA announcing the cancellation of this exam? Any reaction coming in yet from the central government on this?
7: Not yet, Vedika. All we have right now is the National Testing Agency statement, wherein they've made very clear that they're going to cancel this examination that was held on May 3rd and that they're going to conduct a re-examination. When that re-examination would be clear after the CBI investigation. Remember, the case is now being looked into by the Central Bureau of Investigation. However, so far what we know from the Rajasthan police and their special operations group is that the leaked paper emerged from a student in Kerala. The student from Rajasthan sent this paper from this student in Kerala, and that students was using this guest paper to the coaching owner as well. And this person who runs the coaching center is in Sikar in Rajasthan. So at this point, you know, the Rajasthan police up until now were probing how this student in Kerala got the paper. So the original source of leak for the paper is still not clear. Now, the complaint was filed by this particular Sikar student, which alerted the SOG. And we know that the SOG was also investigating this handwritten document that has been called as as the guest paper containing these exam questions that were being circulated before the examination. Now, this guest paper approximately had 410 questions, out of which 120 questions have matched the guest paper or the, you know, with the actual exam for the biology and the chemistry sections. So, all of this up until

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: that the protesters were not allowed to protest there at the Congress office, at the NSUI office. And now, in fact, here again you are seeing the visuals, very dramatic visuals unfolding here at the NTA office. In fact, they are sitting on dharna, and they are also, in fact, demanding. What are your demands right now? What are you demanding?
1: हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, जो इसमें दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और एनटीए को बैन करना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पूरे भारत के स्टूडेंट से माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।
0: आगे आप लोग दिल्ली के अलावा क्या पूरे देश भर में प्रोटेस्ट करने वाले हैं?
1: दिल्ली के अलावा पूरे देश भर में हम तो नॉर्मल प्रदर्शन कर रहे हैं आज, और उसके अलावा अगर जांच नहीं हुई इसी तरीके से तो हम उग्र आंदोलन करेंगे पूरे देश में, इनसे ही इंसिडेंट बता देगी।
0: So you see, these are the protests that are underway, and there are a few more karyakartas who are, in fact, just outside these premises and who are again coming over here. They just want to, in fact, confront the officials. Not just that, but they are also holding this dramatic protest here just outside the NSUI, outside the NT office. And in fact, we'll also keep on showing you the visuals so as to the dramatic scenes which are unfolding, and we'll also, in fact, speak to them. आपने ये poster लिया हुआ है कि doctor degree on sale, NEET 2026 scam.
2: बिल्कुल, मोदी सरकार में डॉक्टर डिग्री सेल हो रही है। आप सोचिए, मोदी सरकार में पिछले 10 साल में 89 पेपर लीक हो चुके हैं। नीट जैसी परीक्षा, जो देश की सबसे कठिन दूसरी परीक्षा है, उस परीक्षा को पेपर को लगातार 3 साल से लीक हो रहा है, और हर बार कोई ना सरकार यही कहती है कि हम दोबारा करा देंगे, हम सॉरी बोल देंगे। इसके अलावा वो कभी कुछ नहीं करती। सीबीआई जांच।
0: आप लोग कहाँ पर आगे की तरफ जा रहे हैं? पूरा गेट की तरफ
2: आगे तक जाएंगे, और हम लोग एनटीए से केवल सॉरी से नहीं काम चलेगा, हमें सख्त जवाब चाहिए एनटीए से।
0: You see, they are also, in fact, planning to move towards the gate. Probably they will be detained as they were not allowed to protest outside the NSUI office as well. But here, in fact, you can see what we are also.
3: All right, so as you can see, a lot of anger on the ground and protests taking place after the NEET exam has been cancelled. It was held on the 3rd of May. The new date has not been announced, but once again, it is a paper leak that is being blamed, and that is the reason, and the CBI now investigating across several states. We'll continue to track this story. For the moment, slipping into a short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्गन मसाला।
5: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
6: So many attacks.
5: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's

0: and welcome. You're watching Prime 5 with P. Raisha Sehgal. On the show today, the suspense continues over the new Keralam Chief Minister, with Rahul Gandhi holding a slew of meetings. The question now is, will there be a common name chosen between K.C. Venugopal and V.D. Sathisan? Also on the show today, second stop story is from Tamil Nadu. Post-poll shocker continues in Tamil Nadu politics. Ahead of Vijay's flow test, at least 30 AIADMK leaders vowed support for TVK. And finally, a special coverage on the Trisha story. Lots more lined up for you on the show today. But first, a quick check on the headlines. National outrage after NEET exam cancel over a paper leak. Demonstrations in Delhi, sources tell NDTV. That leak happened from Nashik in Maharashtra. NDTV speaks exclusively with NTA DG on NEET paper leak. NTA chief says committed to fair exam, asserts tough decisions needed to maintain credibility.
1: Larger interest of most. NTA was committed to conduct a zero error, zero tolerance to any malpractice, and this report came in with regard to that, in which it was felt that to conduct a re-exam or to cancel this exam will be in the larger interest of most candidates. ICO decided to take this decision, as we have indicated in the press release that's been issued already.
0: Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay appoints his astrologer as officer on special duty to the Chief Minister. Reportedly, his astrologer TVK Victory a year ago. Suspense over Keralam Chief Minister grows. BJP takes pot shots at Congress, says party clueless despite clear majority. Congress hits back, says decisions will be taken democratically. Jayalalitha's party headed for split. AIADMK leader Shanmugam extends support to Vijay's TVK, seeks Velu money as legislature head. Chief Minister Vijay likely to meet Shanmugam. He's rather met him moments ago. All right, we are cutting across live to the NTA briefing, which is currently underway after the NEET paper exam got cancelled.
2: प्रश्न भी अगर मैच कर रहा है, तो मेरी प्रक्रिया भंगित हो रही है, मेरी जीरो एरर जीरो टॉलरेंस की भंगित हो रही है. इसको जांच करने की जिम्मेदारी कि 30 क्वेश्चन थे कि 45 थे कि 50 थे कि 60 थे, यह काम सीबीआई करेगी, पूरी फोरेंसिक्स लेके करेगी और उनकी रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई होगी.
3: कितने राज्यों सर, कितने राज्यों में, कितने राज्यों तक ये पेपर पहुंचे?
4: गड़बड़ी कहां पर हुई? कोई एक लाइन कहे कहां पर चूक हो गई जिसके लिए कहा जाए?
2: उसकी भी रिपोर्ट देखिए, जब तक सीबीआई को जब हमने जांच दी है, तो मैं सीबीआई की जांच को प्रभावित नहीं करना चाहूंगा अपना निर्णय करके. हमने बस ये किया कि जो शिकायत आई थी उसमें अगर एक इंच की भी, एक आयोटा की भी सच्चाई है, तो हम उसके ऊपर लेके कार्रवाई किए हैं. अब किस हद तक है, कितना हद तक है, उसको करने में समय लगेगा, परंतु हम जानते समय बहुत महत्वपूर्ण है. हम जितना डिले करेंगे उतना ये समस्या बढ़ेगी. उतना अगर हमको री एग्जाम करना है, तो वो निर्णय आज हम ले रहे हैं तो हम जल्दी कर पाएंगे. तो हम जांच की इंतजार करें, वो क्या हुआ है, कितने प्रश्न हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है, कितने राज्य इन्वॉल्व हैं, कौन इन्वॉल्व है, यह सब उसकी सीबीआई की रिपोर्ट में आएगा. सी, अभी मैं अपनी टीम के साथ बैठ करके वही तय करने का प्रयास कर रहा हूं. जब मुझे बताया इन लोगों ने कि आप सब यहां इंतजार कर रहे हो, तो मुझे लगा आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इनफैक्ट परीक्षा के पहले जो हमने तमाम कई स्कैमर्स के ऊपर कार्रवाई की, उसकी इनपुट हमें मीडिया से भी मिली. तो मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है. इस तरह के जो अनैतिक कार्य करते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको रोकने के लिए. तो जैसे ही इन्होंने बताया, मैंने बोला मैं चल के आपसे एक साथ बात करूंगा. पहले मैंने बोला कि सबको ऊपर ही बुला लो, बट फिर ये कहा कि नहीं, वहां सेटअप इतना नहीं हो पाएगा, यहीं चलते हैं. तो मैं यही आश्वस्त करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम हर ऐसे व्यक्ति को जो ये बदमाशी करने की कोशिश कर रहा है, और कहीं भी रिपोर्ट आती है कि कोई प्रश्न पत्र बेच रहा है या कोई झांसा दे रहा है, बहुत सारे ऐसे केसेस आए एग्जाम के पहले जिसमें लोग ओटीपी मांगते थे, वो स्कैम कर रहा है, पेपर देने की बात करके ओटीपी मांग के उसका बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो हम उस सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई किए हैं और हमारी यही नीति है कि हम एग्जाम में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होने देंगे।
3: सर एक एक एक एक सवाल
2: डेट के लिए मैं अभी अपनी टीम के साथ बैठूंगा और हम अगले कुछ दिनों में पूरी शेड्यूल डेट का हम अनाउंस कर देंगे। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कम से कम समय में एग्जाम कर लें, जिससे कि जो एकेडमिक कैलेंडर है, जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन शेड्यूल है, वो वायलेट ना हो। हम अगले 7 से 10 दिनों के अंदर शेड्यूल बता देंगे।
3: सर अभिषेक सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपका ही डिपार्टमेंट तय करता है सारी चीजें, प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, फिर उसको छपने के लिए दिया जाता है, इस ट्रेल में कहीं आपको लगता है कि आपका ही कोई कर्मचारी या आपके आपसे जुड़ा हुआ कोई कर्मचारी जो अंदर कैमरे में है वही पेपर लीक करता है, वही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही पैसे का लेन देन करता है, क्या अंदर का ही कोई शख्स है? क्योंकि देखिए, जब पेपर छपने के लिए जाता है और जब पेपर बनता है उसके उसमें सभी इन्वॉल्वमेंट अधिकारियों का ही होता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो कहां पर वो चूक होती है, कहां से वो लिख करके पेपर इधर उधर होता है, कहां से SMS के जरिए जाता है, ये कैसे होता है?
2: देखिए, ये अंदर का हो या बाहर का हो, CBI से हमारी यही दरखास्त है कि जो भी हो उसको पकड़ के उसको सजा दिलाई जाए, ताकि ये जो समस्या है जड़ से खत्म हो पाए। मैं आपके जितना जानकार नहीं हूं, मैं अभी 1 अप्रैल को ही ज्वाइन किया हूं, मैं सिस्टम को अभी किसको ये बताना कि कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, विल बी प्री जजिंग द होल इंक्वायरी। हम CBI को निष्पक्ष, स्वच्छंद, स्वतंत्र रूप से जांच करने की रिक्वेस्ट किए हैं, और जिसमें NTA से जो भी सूचना चाहिए, NTA के जिस कर्मचारी से पूछताछ करनी चाहिए, CBI को पूरी राइट्स होगी, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे और हम सुनिश्चित करेंगे कि यह सिचुएशन जो आज हम हैं ये दोबारा ना आए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी
3: जाए। क्या सिस्टम जो आपने अपनाया है अभी तक उसमें कोई बदलाव होगा?
2: मतलब सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या खामी है, यह इंक्वायरी से जब निकल के आएगा, तो अगर सिस्टम के पार्ट में कोई भी ऐसा क्रम है जिसकी वजह से समस्या होती है, तो उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा।
5: सर, पहली बात तो ये, सर ओरिजिन कहाँ था, व्हाट वाज द ओरिजिन एंड व्हाट वाज द मोडस ऑपरेंडी? आपने कहा कि डिजिटल के जरिए भी हुआ और फिजिकली भी उसे कुरियर के द्वारा भेजा गया, इसमें
2: मैंने नहीं कहा,
5: ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है सामने, तो आप ये हाईलाइट करें सर।
2: देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमने जांच CBI को दी है, तो और जितने दिन में हमें 7 तारीख को खबर मिली, हमने इतने दिन में इतना ही तय किया कि कंप्लेंट में सच्चाई है या नहीं है, ओरिजिन क्या है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, ये निर्णय इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते, ना हमारी क्षमता है। यह कार्य CBI का है और CBI यह कार्य सुचारू रूप से करके ये सबके सामने लेके आएगी कि क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, कितने लोग इन्वॉल्व थे, कितने राज्यों में हुआ, तो ये सब जानकारी CBI देगी। हमने साफ साफ कहा कि जो PDF जो सर्कुलेट हुआ उसमें से कुछ प्रश्न पत्र से मिल रहे थे, तो इसको अगर आप लीक कहें या अनियमितता कहें या वॉयलेशन ऑफ प्रोसेस कहें, हमने यह माना कि ये एग्जाम की जो प्रक्रिया चल रही थी उसका उल्लंघन था, इतनी हद तक था कि हमें यह कड़ा निर्णय लेना पड़ा कि एग्जाम कैंसिल करें।

0: नहीं, अगर गड़बड़ कहाँ से हुई और कहाँ चूक हुई इसके मैं अंतिम निष्कर्ष पे पहुँच जाता तो सीबीआई को क्या कार्य देने की आवश्यकता होती। हम सारी सूचनाएं, हम जो जितनी जानकारी है हमारे पास, और हम नहीं चाहते कि सीबीआई की जांच किसी भी तरह से प्रभावित हो, तो सीबीआई को फ्री जांच करना बहुत आवश्यक है। इस समस्या को जड़ से खत्म करना आवश्यक है। पेपर के छपने की शुरुआत एक जगह नहीं होती है, कई जगह होती है, वह गोपनीय रखा जाता है तमाम कारणों के लिए, परंतु सीबीआई को वह सारी जानकारी दी जाएगी। और सीबीआई वह जो कोई भी व्यक्ति है, किसी भी स्टेज पर है, किसी भी क्रम में है, उसको पकड़ के निकालेगी।
1: 2024 में पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हुआ, पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा?
2: आप क्या कर रहे हैं सर?
1: पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा सर?
3: प्रोसेस विल बी ओवर विद इन 14 डेज।
0: प्रोसेस
1: अभिषेक जी पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? पेपर लीक का सिलसिला कब थमेगा? 24 में भी लीक, 26 में भी लीक।
0: पेपर लीक का सिलसिला तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि हम इस स्टेज पर हैं। यह हमारे देश के बच्चों के लिए, हमारे देश के बच्चों के अभिभावकों के लिए, पूरे इकोसिस्टम के लिए, हमारे तंत्र में मुझे पता है 2 लाख से ज्यादा लोग पूरे एग्जाम में जुड़े थे, यह किसी के लिए श्रेयस्कर नहीं है। हम इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ, हम उसको कैंसिल कर रहे हैं, दोबारा कराने की ले रहे हैं, इस एश्योरेंस के साथ ले रहे हैं। जब मैंने पिछले महीने अप्रैल में भी बात की, प्रेस रिलीज दिया था, हमने यही कहा था जीरो टॉलरेंस है, परंतु उसके बाद अगर कोई अनियमितता होती है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको रफा दफा करें। हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम परीक्षा कैंसिल करेंगे, ताकि ऐसे तत्व जो इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता को और पूरी प्रक्रिया के जो इंटीग्रिटी को वायलेट करते हैं, वो सफल ना हो पाए। तो अगर हम कुछ भी कैंसिल करने और री एग्जाम करने से कम करते हैं तो ये उनको बढ़ावा हो।
4: 22 लाख
0: स्टूडेंट से बस मेरी यही अपील है कि कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के झांसे में ना आए जो प्रश्न पत्र बेच रहा है या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो उसको पुलिस को या एनटीए को रिपोर्ट करिए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति को आप प्रलोभन में आते हैं तो वह उनको बढ़ावा देता है और पूरे व्यवस्था को चौपट करने में कंट्रीब्यूट करता है। तो हमसे बड़ी गुजारिश है कि अपनी मेहनत पे विश्वास करें, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको हम पूरी न्याय देंगे और एग्जाम सुचारू रूप से करेंगे।
4: सर कितना दिनों में हो जाएगा ये बताओ?
0: हम बता देंगे।
5: That was the NTA DJ Abhishek Singh saying that the case has now been handed over to the CBI to probe the number of questions leaked. However, he has not announced the next date for the NEET examination, which thousands, lakhs of medical aspirants are waiting for. The case has been handed over to the CBI and the paper administered was not leaked. That's what the NTA DJ Abhishek Singh has said. He's NDTV meanwhile has also accessed the pictures of the leakers. Remember, one of the accused has been arrested from Nashik, but at this point of time, no clarity on how long will the probe take and when the next NEET examination will take place. I'm going to go across to my colleague Ishika, who is now joining me live from outside the NTA headquarters. Ishika, at this point of time, we heard the NTA DJ giving out clarifications, but a slew of questions remain unanswered. Number one, how long will the probe take? And number two, of course, when will the re-examination take place with the future of lakhs of medical aspirants hanging in the balance?
6: Well, as you rightly said, that these two questions are currently very crucial at the moment, because so far, whatever the NTA DJ Abhishek Singh has said, he has not clarified.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आग और मसाला।
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: particular case, silence would be counted as consent. I'm out of time. I certainly hope that a more strident and specific position is taken on such comments, because these are not innocent. These are not coincidental. The manner in which it was done, misusing the immunity that the State Assembly provides to Nidhi Stalin, is malicious, nothing less. Thanks very much, all gentlemen, for having joined us. The focus now shifts to history that was scripted in Assam today, with them who powered BJP's hat-trick in the state, taking oath as chief minister for his second consecutive term. Himanta Biswa Sarma led the NDA's campaign. The ruling alliance scored a century this time, winning 102 seats in the 126-seat state assembly. The resounding mandate has not only defined the state's political picture, but has also sharpened the lines of identity and has pretty much set the tone of what could happen in the lead-up to 2029. Now, remember, the overwhelming number that the NDA has got, all of them are Hindus. In fact, what has also happened is that the opposition, the Congress, the second largest party, is almost entirely Muslim. You've got 18 out of 19 MLAs who were elected from the Congress are from Muslim seats. They are from Muslim-dominated areas. They are themselves Muslim. And that is the reason why that now the conversation has started across the country. Is this going to be a sharply defined political narrative, a political battle that is going to be fought in the days to come? And in fact, this is a trend that was first vocalized by Badruddin Ajmal, the leader of the AIUDF, and an MLA now of the AIUDF, who now joins us live on the Buck Stops here. Thank you very much, Badruddin Ajmal Saab, for speaking to us. The Assam cabinet was sworn in today. And, you know, despite what you have said throughout the entire campaign, aap kehte rahe ki Himanta Biswa Sarma nafrat ki rajneeti karte hain, lekin is sab ke baawajood, unko is baar aur bhi zyada bada mandate mila hai. Khud se, unhone 82 seats jeeti hain aur NDA ko 102 seats mili hain. Kyun?
1: देखिए मेरे हिसाब से हेट और रिवार्ड दोनों आप पॉलिटिकल एंगल से देखिए. पॉलिटिकल एंगल ये हेट भी पॉलिटिकल था और रिवार्ड भी जो दिया है वो पॉलिटिकल मिला. सोचा समझा एक तजर्बेकार पॉलिटिशियन है डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा, उनको मालूम है कहाँ किस वक्त कौन सा लग बोलना है और किसके ऊपर प्रेशर बनाना. आप इस तरफ 40 किलो का पत्थर रखेंगे तो वो तो 125 का पत्थर नीचे ऊपर हट के आ जाएगा. मुस्लिम को जितना हेट कहेंगे, जितना मियागिरी बोलेंगे, जितना हम उनका कमर तोड़ देंगे, गर्दन तोड़ देंगे, ये जितना बोलेंगे तो आसामी लोग खुश होंगे. और इसका नतीजा ये है, उनको जितना वोट मिलना था उसका नतीजा दूसरा ये भी है कि कांग्रेस वालों ने वहाँ कोई काम नहीं किया. राहुल गांधी भी पहले आए थे तो उस तरफ लेके नहीं गए, उनको भी पोर्टपेटा में लेके गए इससे पहले वाले, तो उधर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है. वोट उनका चाहिए, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी नहीं दिए. नूरीन ज्योति को 13 या 14 कैंडिडेट सेट दे दिया, एक भी नहीं आया. अखिल गोगोई को 2 14 में से 2 ही आए, वो भी एक दोनों मुस्लिम इलाके में आए, एक उनका सीट आया एक मुस्लिम इलाके में आया टीम में. ये पूरा एक सोरा समझा प्लानिंग है. और मुझे तो डाउट है कभी कभी डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा का और आसाम के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, इससे पहले वाले तो मैं बार बार कहता था 2 साल से 3 साल तक ये मिली भगत है. और ये पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे भूपेन बोड़ा, वो पेड सर्वेंट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा.
0: नहीं पर हाँ,
1: ये गौरव गोगोई अभी तक बिके नहीं होंगे लेकिन अच्छे खासा समझौते के साथ इन लोगों का ये मैच फिक्सिंग मैच चुका है. और फिर तुम डराते रहो और लोग हमारे पास आएंगे. नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने हिंदू इलाके में जितने भी सीट दिए उनको कुछ नहीं मिला. 19 जो सीटें मिली है उसमें 18 सीट मुस्लिम को मिली, ओनली मुस्लिम एरिया. इसका मतलब क्या है, मुस्लिम कांग्रेस का जो सेकुलर इमेज था, जो सेकुलर कैरेक्टर था, वो कांग्रेस ने खत्म कर दिया.
0: नहीं
1: बट ऊपर के लोगों ने खत्म कर दिया.
0: नहीं
1: अब
0: पर...
1: वो मैं इसलिए जिस दिन जीते हैं कांग्रेस वाले या फिर जो भी हो, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कांग्रेस नाउ बिकेम ए मुस्लिम लीग पार्टी इन आसाम. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कौशम कमरम कांग्रेस बना था उसका एक सेकुलर कैरेक्टर था. मुल्क को आजाद किया गया था, हिंदू मुस्लिम ने कांधे से कांधा मिला के लड़के मुल्क को आजाद किया था. और उसके बाद आज से कुछ पहले तक कांग्रेस ये मेंटेन कर रही थी, लेकिन जब से कांग्रेस ने उस उसूल को छोड़ दिया कहीं समाजवादी बन गया, कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस बन गया, कहीं बंगाल में ममता बन गई, ये सब कांग्रेस के टूटे हुए लोग हैं जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं दुखी है। आसाम में भी हाल हो रहा है, कांग्रेस की लापरवाही जाने अनजाने में उसका पूरा का पूरा 100% फायदा जो डॉक्टर हेमंत मिश्र समाज उठा है। और बिकॉज ही वॉज देयर, तीन टर्म से तीन कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको मालूम है इंटरनल क्या क्या है, इसलिए उन्होंने सही जगह पे जहाँ कमजोरी है उन्होंने मारा डंडा और काम हो गया।
0: पर अजमल साहब, लगता तो ऐसे है कि आपका फिक्स मैच है हिमंत बिस्व शर्मा के साथ, जिस तरीके से आप लगातार कांग्रेस को अटैक करते रहते हैं, ये बार बार यही कहना कि भाई कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बन गई है, मुस्लिम लीग बन गई है, ये तो आपका फिक्स मैच लग रहा है।
1: हम कई साल से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, देखिए हमारा एक ही आदमी गया है, वो भी इलेक्शन से पहले, वो गया है एजीपी में, और कांग्रेस के 10 साल से लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े प्रेसिडेंट चले गए, समझे के नहीं, बड़े उनके एमपी चले गए, ताजा ताजा एमपी उनके अंदर से चला गया। तो कांग्रेस के साथ बीजेपी का मैच फिक्सिंग है, नॉट बदलती जनता।
0: बट इसका ये मतलब नहीं है कि कौन किसकी पार्टी में जा रहा है, मेरा कहने का ये मतलब था कि जिस तरीके से आप बार बार कांग्रेस को एक तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो मुस्लिम लीग हो गए हैं, लोगों का हक है, द मुस्लिम्स हैव अ राइट टू वोट फॉर हूएवर दे वांट टू, एंड इन फैक्ट इफ दे वांट टू वोट फॉर अ नेशनल पार्टी, व्हाट इज रॉन्ग इन इट?
1: आई हैव स्टार्टेड दिस आफ्टर विनिंग एंड आफ्टर फिनिश द इलेक्शन, आफ्टर द रिजल्ट, व्हेन वी सी द रिजल्ट इज 18 इन 18 19 only 18 is Muslim. What is?
0: Yes, but what is
1: Congress
0: wrong with it?
1: Muslim, then, that's why I'm saying, this claiming, this is my claim. There's Muslim, the Congress become a Muslim League.
0: Arre, but Ajmal Sahab, then you can also be called the Muslim League, na? 15 out of your 16 MLAs in 2021 were only Muslims.
1: Nahin, hamari party mein jab bhi 16, 17, 18, you go on the record, do baar, teen baar mein jitna 18 MLA hai, teen, char aadmi हमारे पास हिंदू रहे, हिंदू भाई लिखो,
0: नहीं नहीं सर,
1: तीन भाई, दो भाई मैं और सिराजुद्दीन अजमल, जब पार्लियामेंट में गए तो हमारे साथ एक आदमी था राधेश्याम जी, वो भी हिंदू था।
0: नहीं बट अजमल,
1: कैसे आप कहेंगे हमारी पार्टी को?
0: क्योंकि अजमल साहब 2021 में, पिछले इलेक्शन में आपके 16 एमएलए थे, अब घट करके आप सिर्फ 3 रह गए हैं, 16 जो एमएलए थे उनमें से 15 मुस्लिम थे ना, पर आप जो है डेमोक्रेटिक फ्रंट हो जाते हैं, AIUDF हो जाते हैं, कांग्रेस के अगर मुस्लिम एमएलए चुन करके आए तो उनको आप मुस्लिम लीग बोलने लगते हैं, आप भी मुस्लिम लीग हो सकते हैं, कांग्रेस आपको बोल दे आप मुस्लिम लीग हो,
1: आसाम के हमारी पार्टी जब भी है तो हमने सेकुलर का डेट दिया, कांग्रेस एक पार्टी हिस्टोरिकल स्टार्ट, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखिए कांग्रेस को तो दूध का दुलावा आप लोग बनाते हैं मीडिया वाले, हम लोग नहीं बनाते, कांग्रेस का वो कैरेक्टर नहीं रहा, ये तो समाजवादी क्यों बना, पंजाब में अलग पार्टी क्यों बना, बंगाल में अलग पार्टी क्यों बना, महाराष्ट्र में अलग पार्टी क्यों, ये सिर्फ कांग्रेस के जुल्म से नाराज होकर लोग गए।
0: सर उन्होंने डेटा दिखाया है,
1: कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा।
0: अरे पर उन्होंने डेटा दिखाया है, आपने सिर्फ असम का एक एग्जांपल कोट किया है, बट दे हैव शोन डेटा दैट ऑफ द 664 कांग्रेस एमएलएस अक्रॉस द कंट्री देयर आर 520 हिंदूज व्हिच इज क्लोज टू 80% एंड ओनली 12% आर मुस्लिम्स व्हिच इज बिकॉज़ दे आर अ नेशनल पार्टी दे आर कंटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री 64 एमएलएस आर फ्रॉम अदर रिलीजियंस देन हाउ कैन यू पुट देम इन द डॉक एंड से
1: सॉरी टू आस्क यू ये जितने मुस्लिम इन्होंने दिए ना पवन खेड़ा उसीन बोल रहे थे आई हैव सीन द इंटरव्यू ये मुस्लिम क्या मुस्लिम है जो मुसलमानों की बात नहीं कर सकते पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाता ऐसे लोगों को भेजते हैं जो बोल नहीं सकते उनकी कोई आवाज़ नहीं है उनका नॉलेज नहीं है उनकी डिग्री नहीं है उनका एजुकेशन नहीं है ऐसे लोगों को उठा के देते हैं जो उनके सामने भी ना बोले ये तो कोई रिप्रेजेंटेटिव देना नहीं हुआ कौम के साथ धोखा है मुस्लिम जाति के साथ धोखा है कौम के साथ
0: नहीं बट मिस्टर अजमल आपको डर तो नहीं लग रहा है कि द कांग्रेस इज नाउ बीइंग चोजन By people who you took for granted, आप उनको एक वोट ब्लॉक की तरह यूज करते थे बट नाउ दे प्रिफर द कांग्रेस पार्टी एंड आई एम सॉरी बट इट वॉज मोस्ट अपेरेंट इन 2024 आपकी खुद की सीट में आप हार गए कांग्रेस के रकीबुल हसन ने आपको 10 लाख के मार्जिन से हराया तो लोगों ने तो चूज किया ना उनको अब आपको डर लग रहा है कि भाई हम लोग एकदम साइडलाइन हो जाएंगे
1: धोखा दे के वोट दिया दो दिन पहले कांग्रेस ने एक हवा उड़ाई प्राइम मिनिस्टर Rahul Gandhi is going to become Prime Minister and Rakibul Hasan is going in the cabinet in Delhi. ये एक ऐसी हवा उड़ाई तो उसके बाद क्या करना है और इधर हेमंत बिश्व शर्मा साहब बार बार लोगों को डरा रहे हैं लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं था कि बचना है तो कांग्रेस को लाओ, बचना है तो कांग्रेस को लाओ। किसको लाओ? कांग्रेस, जो राहुल गांधी को प्राइम

0: कांग्रेस के बेवकूफ बनने वाले नहीं है, लोगों ने दिखा दिया ये अभी 17-18 सीटा है, कहां से मुसलमानों की आए ना, जाइए ना दिखाइए आसामी इलाके, कोई भी उनके पास अगर एक सीट भी है व्हाई नॉट, क्यों घबराए हुए हिंदुओं के साथ, क्यों नहीं जाते हिंदू इलाके में, राहुल गांधी जाते उनका एक चक्कर मरवा देते मुस्लिम इलाके में, इस दिस डेमोक्रेसी, इस दिस डेमोक्रेसी में
1: नहीं तो
0: इज नॉट डेमोक्रेसी,
1: व्हाट इज
0: लोगों को
1: योर,
0: बेवकूफ बनाने का धंधा है।
1: नहीं तो आपका क्या डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का, कि कांग्रेस जो है मुस्लिम्स का वोट ही ना मांगे, ये कोई खराब चीज तो है नहीं ना, वो हिंदू इलाके में भी जाते हैं, वो मुस्लिम इलाके में भी जाते हैं, वो अलग अलग सीटों पे लड़ते हैं, कई जगहों पे उनके मुस्लिम एमएलए चुन के आते हैं, कई पे उनके हिंदू एमएलए चुन करके आते हैं, क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं है?
0: इन इंडिया वेयर आर द मुस्लिम, वेयर मुस्लिम इज गोन टू अदर पार्टीज, व्हाई? बिकॉज कांग्रेस हैड बिट्रेड देम फ्रॉम लास्ट 75 इयर्स इन असम, कांग्रेस हैड नॉट डन एनीथिंग फॉर मुस्लिम, वी हैव प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम and on all problems created by Congress government. Detention camp by Dr. Arun Gogoi, foreigners issue, Arun Gogoi, reporter Arun Gogoi, every problem they have created for us.
1: बट असम में आप अगर कह रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है कांग्रेस ने, बराक वैली में आपको वोट नहीं मिला, कांग्रेस को वोट मिला, अपर असम में, साउथ असम में, सारे जितने एरियाज हैं वहां पे मुस्लिम्स ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिए हैं, उन्होंने कांग्रेस को चूज किया है, आपको रिजेक्ट किया है, बंगाल में जो एरियाज हैं जहां पर 60-70% मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, तो क्लियरली कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ चॉइस। नाउ आप कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, बट मुसलमानों को लग रहा है वो उनको चूज करना चाहते हैं।
0: आई एम टॉकिंग, और इस पर तब अभी कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर मुसलमानों को ब्लैकमेल किया, इन लोगों का अंदर का समझौता है, हेमंतों को बोला कि तुम डराओ, खूब डराओ, जैसे मछली मारते आपने तो नहीं देखा होगा, तो एक तरफ से पानी से मछली वाले डंडे से मारते, सब मछली दौड़ के जाते उधर जाल लगाओ, हेमंत मिश्र शर्मा जाल में मछली को भेजने के लिए और डंडा मारते रहे, सारी मछलियाँ जाके हम तो डॉक्टर क्या नाम है कांग्रेस के उसमें मुसलमान पहुंचे, इसलिए कि इधर से डंडा मार रहा जाएगा कहाँ, मुसलमानों को एक ही होप है कि गौरव गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, गौरव गोगोई साहब अपनी सीट नहीं संभाल पाए, गौरव गोगोई अपनी सीट नहीं संभाल पाए, धुरिंग ज्योति अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए,
1: नहीं
0: क्या
1: आप
0: हो रहा है सब?
1: आप भले से ही कांग्रेस को मुस्लिम लीग बोलते रहे, बट द फैक्ट इज दैट नेशन वाइड दे आर गेटिंग वोट्स, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट।
0: अच्छा बेटर लव्स है यू गिव मी आई विल टेल देम
1: सेक्युलर, सेक्युलर यू कैन
0: बेटर लव्स, बेटर
1: वर्ड यू कैन कॉल देम सेक्युलर,
0: secular, they are not secular. Nowadays, they are not secular. Only they are claiming to be secular. They are not secular. I am very, very sorry. जाइए ना पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ नहीं है, तो कहां से सेकुलर हो गए? कौन सा स्टेट है उनके पास? जो एक दो है वो भी अगले अगले में खत्म हो जाएगा, जब तक के राहुल गांधी की पॉलिसी नहीं बदलेगी मुसलमानों के लिए सेकुलर कैरेक्टर जो आजादी के टाइम पर उनका था, उनके बाप दादा ने गांधी जी ने जो बनाया था जिसके बाद उस कैरेक्टर पे उनको जाना पड़ेगा।
1: क्या है वो
0: ठगी का धंधा? मुस्लिम विल नॉट टॉलरेट, नो।
1: क्या है वो कैरेक्टर? व्हाट इज दिस कैरेक्टर?
0: मुस्लिम दिल खोल के मुसलमानों को अपनाओ, मुसलमान आपको अपना समझे, आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आपको रिजेक्ट कर चुका है, आसाम में एक केस हो गया, आपने इधर से डराया हेमंत के साथ मिलकर, आप लोगों की मिली भगत थी, मैं 1.5-2 साल से कह रहा हूँ हेमंत जी डरा रहे हैं, उनको डर है कि उनकी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो मैं जाकर कांग्रेस का पीछे पीछे बन जाऊंगा, तो मेरे लिए जिस दिन सीट बांटा उन्होंने कहा 32 ऑफ दिस कैंडिडेट इज माइन, मैंने भेजा उसके अंदर, और जीतने के बाद ही कहा जब कांग्रेस 20-22 पे आ गई तो उन्होंने कह दिया कि इसमें से 8 भेज, क्या मतलब है
1: अजमल साहब
0: आपसे इतना बेवकूफ समझते हैं कांग्रेस और हेमंत बिश्व शर्मा?
1: अजमल साहब आपसे आखिरी सवाल मैं यही पूछूंगी कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टाइटली फॉट, द वे दीस बाइनरीज आर हैपनिंग, क्या समाजवादी पार्टी को डरना चाहिए?
0: लूट लिया बंगाल में, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वहां डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ, आप लोग पढ़े लिखे हैं मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े, क्या हुआ

0: गवर्नमेंट का कोई मिशन ही नहीं रहा। होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, लोकल पुलिस ने ना सब कुछ उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अमित शाह जी एक महीना पड़े रहे, व्हाट इज द इंटरेस्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट, सिर्फ इसलिए कि ममता से सत्ता को खींच रहा है, लूट के ले जाना है। ये खुला खुली डकैती था मैडम, डकैती। इससे दूसरी पार्टियां जो अपने आप को एनडीए कहती है, गठबंधन है, अगर गठबंधन था राहुल जी ने दिल्ली बंगाल में जाके कैंडिडेट क्यों दिया, क्यों राहुल जी उसके लिए ममता के कैंपेन के लिए नहीं गए, मिलके लड़ते आज नतीजा कुछ और होता। क्या मिले राहुल गांधी को, यहाँ भी कैंडिडेट देते हैं, वहाँ भी कैंडिडेट देते हैं, अपने एलायंस के साथ कैंडिडेट है, सामने दो सीट मिला। हमें अफसोस नहीं है कि हमको आसाम में दो सीट मिला। राहुल गांधी जैसे लोग जो आसमान के सितारे के लोग हैं उनको भी दो मिला। हम तो लूज में नहीं, लूजर नहीं, वी आर नॉट लूजर।
1: किसने क्या लूटा है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पहले आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके वोट लूट लिए, फिर आप कह रहे हैं बीजेपी ने इलेक्शन ही लूट लिया। बट वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल्स इन द लीड अप टू व्हाट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन सीजन नेक्स्ट ईयर, अ होस्ट ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड देन ऑफ कोर्स 2029। बदरुद्दीन अजमल, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। दैट्स इट देन फ्रॉम मी ऑन टुडेज एडिशन ऑफ द शो। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, when it's a story you care for, the buck stops here.

0: sister who says, I believe in all religions, I respect all religions, a person is hurting another religion. Just expunge it. How long will it take? That is a process.
1: So what is the second question?
2: Why did the chief minister at least not step in and say this is not okay, that these words should be expunged?
1: So what is the second question?
2: This is improper.
1: Yeah, Padmaja, let him answer. What is the second question? You said two questions you have.
0: The first question.
1: What is the second question?
0: When the chief minister is seated in front of him, he could have raised an objection stating that for me, for my government, every religion is equal. Please do not speak like this. If that was not done. Somebody in the assembly, please be very careful and judicious about talking about what happens in the assembly and outside assembly. Somebody from the party could have said, this is wrong, expunge it. We don't want to hurt any religion. The two questions are over. Please feel free to answer to the point. Thank you so much.
1: Please answer this question. Did our CM did not say that we are here for equality? We are here for
0: exactly,
1: everybody. We are not
0: exactly.
1: going to
0: when
1: take on
0: anybody.
1: When
0: the chief minister says he is for equality,
1: did RCM
0: said
1: or not?
0: And right in front
1: not?
0: Of him, a
1: did
0: person
1: said,
0: makes a remark like
1: yes.
0: this, you
1: just
0: should
1: after,
0: have
1: just after the LOP,
0: say, expunge it.
1: No. Please wait, sir.
0: But
1: please wait. We are not
0: going
1: to work as
0: anywhere.
1: As
0: I think the answer
1: you
0: got.
1: No, as you pull the strings, nobody is going to work. This is the first statement of the LOP, the respected LOP. This is the first speech of him in this assembly. And he has given his speech. As soon as the speech ends, CM has stated, we are here for equality. We are here, we going to see everybody equal. We're going to treat everybody equal. That was our CM.
2: Let me ask you this, Dr. Rajshekar, very simply. Tomorrow, God forbid, if a riot was happening, will you stand on the sidelines and say, I don't want to get involved in all of this, you know, because we have bigger things to do. I have an expressway to build. I have a school to build. So I will just leave this to the people who are involved in it because I don't want to fan this fire. This is none
1: of
2: my business. This, sir, is a hate crime. And as the Supreme Court of India said, it is a misuse. It is a misuse of freedom of speech. It is against the constitutional provisions of our country. And if inside the assembly, the constitution of our country is being violated yet again, the chief minister simply cannot sit and remain quiet because in cases like this, silence, Dr. Rajshekar, is consent.
1: I have to answer this. You have put a very serious question. If you are expecting a riot over this debate, if you are expecting a riot over fueling this debate, that is not going to happen in Tamil Nadu because you doesn't have any idea of what Tamil Nadu is thinking. Tamil Nadu is not into that. We are not going to get into fist fight over this simple statement.
2: I never said that there is going to be any fight over this comment. I said that this
1: is
2: also a hate crime, like an actual physical hate crime would be. And to keep quiet and say, we believe in equality, but we don't want to get involved, sir. In this particular case, silence would be counted as consent. I'm out of time. I certainly hope that a more strident and specific position is taken on such comments, because these are not innocent. These are not coincidental. The manner in which it was done, misusing the immunity that the State Assembly provides with Nidhi Stalin, is malicious, nothing less. Thanks very much, all gentlemen, for having joined us. The focus now shifts to history that was scripted in Assam today, with the man who powered BJP's hat-trick in the state taking oath as chief minister for his second consecutive term. Himanta Biswa Sarma led the NDA's campaign. The ruling alliance scored a century this time, winning 102 seats in the 126-seat state assembly. The resounding mandate has not only defined the state's political picture, but has also sharpened the lines of identity and has pretty much set the tone of what could happen in the lead up to 2029. Now, remember, the overwhelming number that the NDA has got, all of them are Hindus. In fact, what has also happened is that the opposition, the Congress, the second largest party, is almost entirely Muslim. You've got 18 out of 19 MLAs who were elected from the Congress are from Muslim seats. They are from Muslim-dominated areas. They are themselves Muslim. And that is the reason why that now the conversation has started across the country. Is this going to be a sharply defined political narrative, a political battle that is going to be fought in the days to come? And in fact, This is a trend that was first vocalized by Badruddin Ajmal, the leader of the AIUDF, and an MLA now of the AIUDF, who now joins us live on the Buck Stops here. Thank you very much, Badruddin Ajmal Saab, for speaking to us. The Assam cabinet was sworn in today. And, you know, despite what you have said throughout the entire campaign, you say that Himanta Biswa Sarma is doing the rajneeti of nafrat. But in all of this, they have also got a bigger mandate from themselves. They have won 82 seats and NDA has 102 seats. Why? Look,
3: according to me, hate or reward, both of you political angles. पॉलिटिकल एंगल ये हेड भी पॉलिटिकल था और रिवार्ड भी जो दिया है वो पॉलिटिकल मिला. सोचा समझा एक तजर्बेकार पॉलिटिशियन है डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा, उनको मालूम है कहाँ किस वक्त कौन सा लोग बोला है और किसके ऊपर प्रेशर बनाना है. आप इस तरफ 40 किलो का पत्थर रखेंगे तो वो तो 125 का पत्थर नीचे ऊपर हट के आ जाएगा. मुस्लिम को जितना हेट करेंगे, जितना मियाँगिरी बोलेंगे, जितना हम उनका कमर तोड़ देंगे, गर्दन तोड़ देंगे, ये जितना बोलेंगे तो आसामी लोग खुश होंगे. आज इसका नतीजा ये है, उनको जितना वोट मिलना था उसका नतीजा दूसरा ये भी है कि कांग्रेस वालों ने वहाँ कोई काम नहीं किया. राहुल गांधी भी पहले आए थे तो उस तरफ लेके नहीं गए, उनको भी पोर्टपेटा में लेके गए इससे पहले वाले, तो उधर कोई जाने के लिए तैयार नहीं है. वोट उनका चाहिए, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स भी नहीं दिए. नूरीन ज्योति को 13 या 14 कैंडिडेट सेट दे दिया, एक भी नहीं आया. अखिल गोगोई को 2-14 में से 2 ही आए, वो भी एक दोनों मुस्लिम इलाके में आए, एक उनका सीट आया, एक मुस्लिम इलाके में आया हिंग में. ये पूरा एक सोरा समझा प्लानिंग है. और मुझे तो डाउट है कभी कभी डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा का और आसाम के कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, इससे पहले वाले तो मैं बार बार कहता था 2 साल से 3 साल से ये मिली भगत है. और ये पहले वाले जो प्रेसिडेंट थे भूपेन बोरा, वो पेड सर्वेंट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा.
2: नहीं पर
3: ये गौरव गोगोई अभी तक बिके नहीं होंगे, लेकिन अच्छे खासे समझौते के साथ इन लोगों का ये मैच फिक्सिंग मैच चुका है. और फिर तुम डराते रहो और लोग हमारे पास आएंगे. नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने हिंदू इलाके में जितने भी सीट दिए उनको कुछ नहीं मिला. 19 जो सीटें मिली है उसमें 18 सीट मुस्लिम को मिली, ओनली मुस्लिम एरिया में. इसका मतलब क्या है, मुस्लिम कांग्रेस का सेकुलर इमेज था, सेकुलर कैरेक्टर था, वो साहब ने खत्म कर दिया.
2: नहीं
3: बट ऊपर के लोगों ने खत्म कर दिया.
2: नहीं
3: अब वो मैं इसलिए जिस दिन जीते हैं कांग्रेस वाले या फिर जो भी हो, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कांग्रेस नाउ बिकेम ए मुस्लिम लीग पार्टी इन आसाम.
2: नहीं
3: अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कौसम कमरम कांग्रेस बना था, उसका एक सेकुलर कैरेक्टर था. मुल्क को आजाद किया गया था, हिंदू मुस्लिम ने कांधे से कांधा मिला के लड़के मुल्क को आजाद किया था. और उसके बाद आज से कुछ पहले तक कांग्रेस ये मेंटेन कर रही थी, लेकिन जब से कांग्रेस ने उस सूर को छोड़ दिया, कहीं समाजवादी बन गया, कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस बन गया, कहीं बंगाल में ममता बन गई, ये सब कांग्रेस के टूटे हुए लोग हैं जो कांग्रेस से कहीं ना कहीं दुखी है. आसाम में भी हाल हो रहा है. कांग्रेस की लापरवाही जाने अनजाने में उसका पूरा का पूरा 100% फायदा जो डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने उठाया. और बिकॉज ही वॉज देयर, 3 टर्म से 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको मालूम है इंटरनल क्या क्या है. इसलिए उन्होंने सही जगह पे जहाँ कमजोरी है उन्होंने मारा डंडा और काम हो गया.
2: पर अजमल साहब लगता तो ऐसे है कि आपका फिक्स मैच है हेमंत बिस्वा सरमा के साथ. जिस तरीके से आप लगातार कांग्रेस को अटैक करते रहते हैं, ये बार बार यही कहना कि भाई कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग बन गई है, मुस्लिम लीग बन गई है, ये तो आपका फिक्स मैच लग रहा है.
3: हम कई साल से बोल रहे हैं कि कांग्रेस के लोग, देखिए हमारा एक ही आदमी गया है, वो भी इलेक्शन से पहले, वो गया है एजीपी में. और कांग्रेस के 10 साल से लोग जा रहे हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े प्रेसिडेंट चले गए, समझे कि नहीं, बड़े उनके एमपी चले गए, ताजा ताजा एमपी उनके अंदर से चला गया. तो कांग्रेस के साथ बीजेपी का मैच फिक्सिंग है, नॉट
2: बट इसका ये मतलब नहीं है कि कौन किसकी पार्टी में जा रहा है. मेरा कहने का ये मतलब था कि जिस तरीके से आप बार बार कांग्रेस को एक तरीके से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई वो मुस्लिम लीग हो गए हैं, लोगों का हक है, द मुस्लिम्स हैव अ राइट टू वोट फॉर हूएवर दे वांट टू, एंड इन फैक्ट इफ दे वांट टू वोट फॉर अ नेशनल पार्टी, व्हाट इज रॉन्ग इन इट.
3: आई हैव स्टार्टेड दिस आफ्टर विनिंग एंड आफ्टर फिनिश द इलेक्शन, आफ्टर द रिजल्ट, व्हेन वी सी द रिजल्ट इज 18 in 18 19 only 18 is Muslim. What is?
2: Yes, but what is
3: Congress
2: wrong with it?
3: Muslim, then

0: That's why I'm getting, I'm saying this, claiming this is my claim. There's Muslim League Congress become a Muslim League.
1: Arey, but Ajmal Saab, then you can also be called the Muslim League, na? 15 out of your 16 MLAs in 2021 were only Muslims.
0: नहीं, हमारे पार्टी में जब भी 16, 17, 18 you go on the record, दो बार, तीन बार में जितना 18 MLA है, तीन चार आदमी हमारे पास हिंदू रहे, हिंदू भाई लेकिन
1: नहीं नहीं सर,
0: तीन भाई, दो भाई मैं और सिराजुद्दीन अजमल जब पार्लियामेंट में गए तो हमारे साथ एक आदमी था राधेश्याम जी, वो भी हिंदू था।
1: नहीं बट
0: तो
1: अजमल
0: कैसे आप कहेंगे हमारी पार्टी को,
1: क्योंकि अजमल साहब 2021 में पिछले इलेक्शन में आपके 16 एमएलए थे, अब घट करके आप सिर्फ तीन रह गए हैं। 16 जो एमएलए थे उनमें से 15 मुस्लिम थे ना, पर आप जो है डेमोक्रेटिक फ्रंट हो जाते हैं, AIUDF हो जाते हैं। कांग्रेस के अगर मुस्लिम एमएलए चुन करके आए तो उनको आप मुस्लिम लीग बोलने लगते हैं, आप भी मुस्लिम लीग हो सकते हैं। कांग्रेस आपको बोल दे आप मुस्लिम लीग हो असम के,
0: हमारी पार्टी जब भी है तो हमने सेकुलर का देख लिया। कांग्रेस एक पार्टी हिस्टोरिकल स्टार्ट, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखिए कांग्रेस को तो दूध का दुलावा आप लोग बनाते हैं मीडिया वाले, हम लोग नहीं बनाते। कांग्रेस का वो कैरेक्टर नहीं रहा, ये तो समाजवादी क्यों बना, पंजाब में अलग पार्टी क्यों बना, बंगाल में अलग पार्टी क्यों बना, महाराष्ट्र में अलग पार्टी क्यों, ये सिर्फ कांग्रेस के जुल्म से नाराज होकर लोग गए।
1: सर उन्होंने डेटा दिखाया,
0: कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा।
1: अरे बट उन्होंने डेटा दिखाया है, आपने सिर्फ असम का एक एग्जांपल कोट किया, बट दे हैव शोन डेटा दैट ऑफ द 664 कांग्रेस एमएलएज अक्रॉस द कंट्री देयर आर 520 हिंदूज व्हिच इज क्लोज टू 80% एंड ओनली 12% आर मुस्लिम्स व्हिच इज बिकॉज दे आर अ नेशनल पार्टी दे आर कंटेस्टिंग अक्रॉस द कंट्री। 64 एमएलएज आर फ्रॉम अदर रिलीजियंस, देन हाउ कैन यू पुट देम इन द डॉक एंड से
0: सॉरी टू आस्क यू, ये जितने मुस्लिम इन्होंने दिए ना, पवन खेड़ा सिंह बोल रहे थे, आई हैव सीन द इंटरव्यू, ये मुस्लिम क्या मुस्लिम है जो मुसलमानों की बात नहीं कर सकते, पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाता, ऐसे लोगों को भेजते हैं जो बोल नहीं सकते, उनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनका नॉलेज नहीं है, उनकी डिग्री नहीं है, उनका एजुकेशन नहीं है, ऐसे लोगों को उठा के देते हैं जो उनके सामने भी ना बोले। ये तो कोई रिप्रेजेंटेटिव देना नहीं हुआ,
1: तो
0: कौम के साथ धोखा है, मुस्लिम जाति के साथ धोखा है कौम के साथ।
1: नहीं बट मिस्टर अजमल, आपको डर तो नहीं लग रहा है कि द कांग्रेस इज नाउ बीइंग चोजन बाय पीपल हु यू टुक फॉर ग्रांटेड, आप उनको एक वोट ब्लॉक की तरह यूज करते थे, बट नाउ दे प्रिफर द कांग्रेस पार्टी एंड आई एम सॉरी बट इट वाज मोस्ट अपेरेंट इन 2024, आपकी खुद की सीट में आप हार गए, कांग्रेस के रकीबुल हसन ने आपको 10 लाख के मार्जिन से हराया, तो लोगों ने तो चूज किया ना उनको। आपको डर लग रहा है कि भाई हम लोग एकदम साइडलाइन हो जाएंगे,
0: धोखा दे के वोट दिया। दो दिन पहले कांग्रेस ने एक हवा उड़ाई कि प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी इज गोइंग टू बिकम प्राइम मिनिस्टर एंड रकीबुल हसन इज गोइंग इन द कैबिनेट इन दिल्ली, ये एक ऐसी हवा उड़ाई तो उसके बाद क्या करना है। और इधर हेमंत विश्व शर्मा साहब बार बार लोगों को डरा रहे हैं, लोगों के पास भी कोई चॉइस नहीं था कि बचना है तो कांग्रेस को लाओ, बचना है तो कांग्रेस को लाओ, किसको लाओ, कांग्रेस जो राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बने प्राइम मिनिस्टर। आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का कहाँ कहाँ है, पर आप गिनाइए ना प्लीज, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्या हरियाणा में कांग्रेस है, हाँ क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस है, क्या यूपी में कांग्रेस है, क्या पंजाब में कांग्रेस है, क्या दिल्ली में कांग्रेस है, खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी होकर रहेगी मैडम, और इनको अपना पुराना उसूल पे जाना पड़ेगा, सेकुलरिज्म को लाना पड़ेगा। मुसलमान और कांग्रेस के बेवकूफ बनने वाले नहीं है, लोगों ने दिखा दिया। ये अभी 17-18 सीटा है, कहाँ से मुसलमानों की आए ना, जाइए ना दिखाइए आसामी इलाका, कोई भी उनके पास अगर एक सीट भी है वाई नॉट, क्यों घबराए हुए हिंदुओं के साथ, क्यों नहीं जाते हिंदू इलाके में, राहुल गांधी जाते उनका एक चक्कर मरवा देते मुस्लिम इलाके में, इस दिस डेमोक्रेसी, इस दिस डेमोक्रेसी मैडम, इस नॉट डेमोक्रेसी।
1: What is
0: लोगों
1: your...
0: को बेवकूफ बनाने का धंधा है।
1: नहीं तो आपका क्या डेफिनेशन है सेक्युलरिज्म का, कि कांग्रेस जो है मुस्लिम्स का वोट ही ना मांगे, ये कोई खराब चीज तो है नहीं ना, वो हिंदू इलाके में भी जाते हैं, वो मुस्लिम इलाके में भी जाते हैं, वो अलग अलग सीटों पे लड़ते हैं, कई जगहों पे उनके मुस्लिम एमएलए चुन के आते हैं, कई पे उनके हिंदू एमएलए चुन करके आते हैं, क्या ये सेक्युलरिज्म नहीं है?
0: इन इंडिया वेयर आर द मुस्लिम, वेयर मुस्लिम इज कौन, टू अदर पार्टीज, व्हाई, because Congress had betrayed them from last 75 years. In Assam, Congress had not done anything for Muslims. We have problems and problems.

0: problem and on all problems created by Congress government. Detention camp by Dr. Arun Gogoi, foreigners issue, Arun Gogoi, reporter Arun Gogoi, every problem they have created for us.
1: बट असम में आप अगर कह रहे हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की है कांग्रेस ने, बराक वैली में आपको वोट नहीं मिला, कांग्रेस को वोट मिला, अपर असम में, साउथ असम में, सारे जितने एरियाज हैं वहाँ पे मुस्लिम्स ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिए हैं, उन्होंने कांग्रेस को चूज़ किया है, आपको रिजेक्ट किया है। बंगाल में जो एरियाज हैं जहाँ पर 60-70% मुस्लिम्स हैं, उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। तो क्लियरली कांग्रेस इज द पार्टी ऑफ चॉइस। नाउ आप कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, बट मुसलमानों को लग रहा है वो उनको चूज करना चाहते हैं।
0: आई एम टॉकिंग, और इस पर तब अभी कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर मुसलमानों को ब्लैकमेल किया। इन लोगों का अंदर का समझौता है, हेमंतों को बोला कि तुम डराओ, खूब डराओ, जैसे मछली मारते आपने तो नहीं देखा होगा, तो एक तरह से पानी से मछली वाले डंडे से मारते, सब मछली दौड़ के जाते उधर जाल लगाओ। हेमंत मिश्र शर्मा जाल में मछली को भेजने के लिए और डंडा मारते रहे, सारी मछलियाँ जाके हम तो डॉक्टर क्या नाम है कांग्रेस के दुश्मन मुसलमान पहुंचे, इसलिए कि इधर से डंडा मार रहा जाएगा क्या? मुसलमानों को एक ही होप है कि गौरव गोगोई साहब चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। गौरव गोगोई साहब अपनी सीट नहीं संभाल पाए, गौरव गोगोई अपनी सीट नहीं संभाल पाए, ज्योति ज्योति अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए,
1: नहीं आप हो रहा है सब। आप भले से ही कांग्रेस को मुस्लिम लीग बोलते रहे, बट द फैक्ट इज दैट नेशन वाइड दे आर गेटिंग वोट्स, यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट। इससे कोई
0: अच्छा बेटर लव्स है यू गिव मी, आई विल टेल देम
1: सेक्युलर, सेक्युलर यू कैन
0: बेटर लव्स, बेटर वर्ड
1: यू कैन कॉल देम सेक्युलर,
0: secular, they are not secular. Nowadays, they are not secular. Only they are claiming to be secular. They are not secular. I am very, very sorry. जाइए ना, पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान उनके साथ नहीं है, तो कहां से सेकुलर हो गए? कौन सा स्टेट है उनके पास? जो एक दो है वो भी अगले अगले में खत्म हो जाएगा। जब तक के राहुल गांधी की पॉलिसी नहीं बदलेगी मुसलमानों के लिए सेकुलर कैरेक्टर जो आजादी के टाइम पर उनका था, उनके बाप दादा ने गांधी जी ने जो बनाया था जिसके बाद उस कैरेक्टर पे उनको जाना पड़ेगा।
1: क्या तो है
0: वो ठगी का धंधा? मुस्लिम विल नॉट टॉलरेट, नो।
1: क्या है वो कैरेक्टर? व्हाट इज दिस कैरेक्टर?
0: मुस्लिम दिल खोल के मुसलमानों को अपनाओ, मुसलमान आपको अपना समझे। आज पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान आपको रिजेक्ट कर चुका है। आसाम में एक केस हो गया, आपने इधर से डराया हेमंतों के साथ मिलकर, आप लोगों की मिली भगत थी। मैं 1.5-2 साल से कह रहा हूँ हेमंत जी डरा रहे हैं, उनको डर है कि उनकी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो मैं जाकर कांग्रेस का पिछले पिछले बन जाऊंगा। तो मेरे लिए जिस दिन सीट बांटा उन्होंने कहा 32 ऑफ दिस कैंडिडेट इज माइन, मैंने भेजा उसके अंदर, और जीतने के बाद ही कहा जब कांग्रेस 20-22 पे आ गई तो उन्होंने कह दिया कि इसमें से 8 भेजे। क्या मतलब है
1: अजमल साहब, आपसे
0: इतना बेवकूफ समझते हैं कांग्रेस और हेमंत बिश्न शर्मा?
1: अजमल साहब आपसे आखिरी सवाल मैं यही पूछूंगी कि नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टाइटली फॉट, द वे दीस बाइनरीज आर हैपनिंग, क्या समाजवादी पार्टी को डरना चाहिए?
0: लूट लिया, बंगाल में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, वहां डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ। आप लोग पढ़े लिखे हैं मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े, क्या हुआ? मतलब गवर्नमेंट का कोई मशीनरी नहीं रहा, होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, आर्मी, पुलिस, CRPF, लोकल पुलिस ने ना सब कुछ उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। अपना अमित शाह जी एक महीना पड़े रहे, व्हाट इज द इंटरेस्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट? सिर्फ इसलिए कि ममता से सत्ता को खींच रहा है, लूट के ले जाना है। एक खुला खुली डकैती था मैडम, डकैती। इससे दूसरी पार्टियां जो अपने आप को NDA के गठबंधन है, अगर गठबंधन था और राहुल जी ने दिल्ली बंगाल में जाके कैंडिडेट क्यों दिया? क्यों राहुल जी उसके लिए ममता के कैंपेन के लिए नहीं गए? मिलके लड़ते आज नतीजा कुछ और होता। क्या मिले राहुल गांधी को? यहाँ भी कैंडिडेट देते, वहाँ भी कैंडिडेट देते, अपने एलायंस के साथ कैंडिडेट है। सामने 2 सीट मिला, हमें अफसोस नहीं है कि हमको आसाम में 2 सीट मिला। राहुल गांधी जैसे लोग तो आसमान के सितारे के लोग हैं, उनको भी तोड़ देगा। हम तो लूज में नहीं, लूजर नहीं, नॉट लूजर।
1: किसने क्या लूटा है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। पहले आप एक तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपके वोट लूट लिए, फिर आप कह रहे हैं बीजेपी ने इलेक्शन ही लूट लिया। बट वेरी डिफरेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग सिग्नल्स इन द लीड अप टू व्हाट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन सीजन नेक्स्ट ईयर, अ होस्ट ऑफ स्टेट्स इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश एंड देन ऑफकोर्स 2029 इटसेल्फ। बदरुद्दीन अजमल, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस। दैट्स इट देन फ्रॉम मी ऑन टुडेज एडिशन ऑफ द शो। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड रिमेंबर, when it's a story you care for, the buck stops here.
2: It was Tamil Nadu's biggest political moment. Actor turned politician Vijay taking oath as chief minister.
3: See Joseph Vijay enum naan satta murai padi niruva petrulla.
2: But within hours of the historic ceremony, another name began dominating social media timelines.
1: In a significant boost to regional diplomacy, Tehran has confirmed that Iran's foreign minister Sayed Abbas Araghchi will travel to India to participate in the upcoming BRICS summit, marking a key moment in the strengthening of ties between the two nations. Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghai has confirmed the high-level visit.
2: It was Tamil Nadu's biggest political moment. Actor turned politician Vijay taking oath as chief minister.
3: See Joseph Vijay enum naan satta murai padi niruva petrulla.
2: But within hours of the historic ceremony, another name began dominating social media timelines. Trisha Krishnan. A short video showing Trisha getting emotional during Vijay's first speech as chief minister.
4: A new CBS report claims that Pakistan quietly allowed Iranian military aircraft to park at one of its key air bases during the recent conflict between Iran and the United States. The US officials familiar with the matter said Iran moved several aircrafts, including military assets, to Pakistan Air Force Base Noor Khan near Rawalpindi. You'd remember this is the same air base that was targeted by India during Operation Sindoor and was completely decimated meters away from the residence of Asim Munir, the Pakistan Army Chief. This apparently happened shortly after a ceasefire was announced by the US President Donald Trump in early April. Among the aircrafts reportedly stationed there was an Iranian Air Force RC-130 reconnaissance plane, a surveillance variant of the Lockheed C-130 Hercules transport aircraft. However, in a recent statement, Pakistan has refuted these claims, quite obviously made by the US media, calling them misleading and sensationalized. Here is the full picture here on NDTV.
5: Serious questions are now being raised over Pakistan's role in the Iran-US war. According to a CBS News report, even while presenting itself as a mediator between Tehran and Washington, Pakistan reportedly allowed Iranian military aircraft to use a key Pakistani airbase, possibly to shield them from potential American strikes. CBS News, quoting US officials, reported that several Iranian aircraft were reportedly moved to Pakistan's Noor Khan Air Base near Rawalpindi after Donald Trump announced a ceasefire with Iran. Among them was reportedly an Iranian RC-130 intelligence and surveillance aircraft. This CBS News report has now triggered concern in Washington. U.S. Senator Lindsey Graham said if the reporting is accurate, it would require a complete re-evaluation of Pakistan's role as a mediator. The U.S. senator also said he would not be shocked if these claims were true. CBS News also reported that Iran reportedly moved civilian aircraft into neighboring Afghanistan. Afghan officials told CBS News that a Mahan airplane landed in Kabul before this war escalated and was later shifted to Herat Airport near the Iranian border for safety reasons. The Taliban has denied reports of sheltering Iranian aircraft. Pakistan has also rejected these allegations. These reported developments once again spotlight Pakistan's close ties with both China and Iran, even as Islamabad continues in